listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: You're listening to Radio Alem 106.3 FM. Dhani Shagir ji aapke saath Bidas Mornings lekar a very good morning, meri jaan.
1: Good morning, pineapple.
0: Oi, hoi.
1: Looking very good, very nice. Good morning, pineapple. Looking very good, very nice.
0: आप पूछोगे इतनी खुशी सुबह सुबह? जी, वेंसडे आ गए, कल थर्सडे और फिर वीकेंड. You know, मैं तो कितना इंतजार कर रही होती हूँ उसका. तो जैसे ही हम वेंसडे तक पहुँचते हैं, मेरा एनर्जी का लेवल सुपर हाई हो जाता है. बाकी कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है मेरी जान? एंड कल का दिन कैसा रहा? इस वक्त क्या कर रहे हैं? अभी उठे हैं, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुकिंग शुकिंग चल रही है, या फिर ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल गए? सब जानना चाहती हूँ. 3311100.

0: मेरा तो लास्ट वीकेंड का हैंगओवर ही नहीं उतरा है. आई वांट टू वीकेंड अगेन. ब्यूटिफुल ट्रैक. जरूरत भी नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ हर दिन सुबह आ जाती हूँ. देन उसके बाद कशिश होती है आपके साथ, फिर सुदेव आ जाता है, फिर सिमरन होती है, फिर मुस्कान होती है. पूरा दिन हम आपके साथ हैं, अकेले कहाँ हो यार आप. सही बात है, पागल स्टुपिड ही है मन.
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार.
0: This beautiful one is also on the way. So, ये कमाल के गाने पूरे इस घंटे में आपको सुनने को मिलेंगे. और भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं, ढेर सारी बातें करेंगे. लेकिन आपको पता है शुरुआत होनी होती है आपसे, आपके मैसेजेस से. तो 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और मुझे एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दीजिए. मेरी भी मॉर्निंग को थोड़ा बेटर बना दीजिए मेरी जान. और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: सल्लू भाई और शोका शाल की आवाज में किक मूवी से हैंगओवर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम त्रिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है। यहाँ पर मैसेजेस आ गए हैं कुछ, आइए पढ़ते हैं। नाजनी जी का मैसेज है, कहती है गुड मॉर्निंग, यू कैन मेक योर एवरीडे काउंट विद अ प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक मॉर्निंग इन देर मेरी जान, दैट इज व्हाई आई एम हियर विद यू इन द मॉर्निंग टू मेक इट मोर एनर्जेटिक एंड मोर लाइवली सो दैट दिन अच्छा जाए। ऐसा होता है ना, हमने बिठा रखा है अपने दिमाग में वैसे कि सुबह जैसी जाएगी वो डिसाइड करेगी कि ये पूरा दिन कैसे जाने वाला है। नो मैटर वॉट हैपन्स यू नीड टू हैव अ गुड डे, ये वाली सोच के साथ चलेंगे ना तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता बेटे। संधू जी का मैसेज आया है, दो मैसेज भेजे नहीं, एक ही मैसेज दो बार भेजा है। गुड मॉर्निंग लिसनर, ओ वाओ, हैव अ ब्लेस्ड डे ऑल ऑफ यू, मे ऑल ऑफ यू हैव योर मॉर्निंग, मे योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद फ्लावर्स, होप एंड ऑप्टिमिज्म, मे योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद ऑल लव टेंडरनेस एंड अ ब्यूटिफुल डे। ब्यूटीफुल के आगे उन्होंने डॉट डॉट लगा दिया, यू कैन फिल वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, इट इज अप टू यू, क्योंकि नया दिन है यार, नई अपॉर्चुनिटीज है, तो जो भी ब्यूटीफुल चाहिए बना लो। थैंक यू संधू जी। और अबरार जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने एक बड़े खूबसूरत सी सीनरी टाइप्स फोटो भेजी और उस पर गुड मॉर्निंग लिखा है और बहुत सुंदर, मतलब यू नो पानी पेड़ और खूबसूरत आसमान, बहुत सुंदर फोटो है यार, आई विश आई कुड शो दिस टू यू। एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, कहते हैं बिगिन योर डे विथ फेथ एंड प्रेयर एंड गॉड विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू फेस एनी थिंग। ये मुझे पढ़ने में वक्त इसलिए लगा क्योंकि बहुत ही छोटे लेटर्स थे बट सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। एंड इमरान जी का भी मैसेज आया है, हाई गुड मॉर्निंग आरजी तनीषा, वेकिंग अप इज ईजी वेन आई नो योर वॉइस इज गोइंग टू लाइट अप द एयरवेव सून, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। जैसा जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया है, सबको गुड मॉर्निंग है जी, एंड आई होप वी ऑल कलेक्टिवली हैव एन अमेजिंग डे टूडे। बाकी अभी एक बहुत अमेजिंग गाना भेज रही हूँ, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू। एंड ये जो मैसेजेस का सिलसिला है ये रुकना नहीं चाहिए जी हाँ, 3311063, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

Kralgan Javalar Sunidhi Chauhan ki awaaz mein bahut hi beautiful track only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindas morning chal raha hai yahan par aur mujhe Bilal ji ka good morning again. It seems like he's enjoying the music. Thank you ji. Well, abhi jab main start kiya tha maine show karna and then I was talking about the weekend and mujhe ek sudden realization has struck hua ki jab main choti thi I did not want weekends. क्योंकि कुछ करने को नहीं है, स्कूल नहीं जाएंगे, फ्रेंड से नहीं मिलेंगे और घर पे रहना पड़ेगा. मम्मा, माय मदर यूज़ टू वर्क, सो मम्मा घर पे होंगी तो वो बहुत सारा काम करवाएंगी. यू नो, ऑल दोज थॉट्स वर देयर एंड आई डिड नॉट वांट द वीकेंड एट ऑल. और घर का काम तो मतलब बिल्कुल कराओ.

Sat would say. And look at me now. Now I only look forward to the weekends. और weekend पे मैंने करना घर का ही काम होता है. You know the usual stuff. Laundry, grocery, cleaning and stuff. वही करने के लिए मैं excited हो रही हूँ. क्या हो गया है जीवन? मतलब हम अपनी life के different different phases में कितने different priorities और हमारी to-do list कैसे change होती है. That is like something to be studied upon, right? But I think it's not just me. Most of us, सबके साथ यही होता है. And you know, phases जैसे change होते हैं, उसी तरह से हमारा perception change हो जाता है towards seeing things. That's why they say कि अगर आप मुझसे 10 साल पहले मिले थे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो 10 साल पहले वाली तनीषा थी, वो आज भी same है. बहुत सारे चेंजेस आए होंगे बिकॉज इन दीज टेन ईयर्स आई मस्ट हैव गॉन थ्रू अलॉट और मैंने बहुत नई चीज़ें सीखी होंगी. मैंने अपने आप में बहुत सुधार भी लाए होंगे और कुछ गलत आदतें भी लगा ली होंगी. यू नेवर नो राइट. सो नेवर बी स्टक ऑन योर ओल्ड वर्जन. हमेशा आगे बढ़ने की सोचते रहो तो ही बेहतर होगा क्योंकि द वर्ल्ड इज एवर इवॉल्विंग and so are we, meri jaan. That's the inevitable truth. Oh my God, kitna gyan beh raha hai aaj to yaar, crazy ho gaya hai. Chalo, Zubi Dubi sunte hai, 3 Idiots se sunne ka mashiya khushal ke vaaz mein. Stay tuned and Jeevan Das.

0: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या, कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: मौसम मूवी से शाहिद माल्या साहब की आवाज मेरे रब्बा में तो मर गया है। ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना होए और इसका वीडियो भी इतना क्यूट है ना, ऐसे छुप छुप के शाहिद जो है सोनम कपूर को देख रहे हैं, बहुत क्यूट है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, त्रिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर, और हम कुछ वक्त के बाद लौट कर आएंगे ब्लैक बोर्ड स्टोरीज पर। फिलहाल हम लेम जेम्स का सवाल पूछेंगे। एकदम आसान सवाल लेकर आई हूँ आज मैं, आपने मुझे बताना है कि ठंडे ठंडे कॉइन्स को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। सपोज कि आपने कॉइन्स जो हैं सिक्के है ना, उन्हें रख दिया है फ्रिज में, अब फ्रिज में वाओ फ्रीज होने के लिए, और वो हो गए ठंडे, तो अब उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपने मुझे एक वर्ड में बताना है 3311063 पर। इट इज़ वेरी रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कुछ रैंडम वर्ड ले आई हूँ, नहीं, वेरी मच रिलेटेड टू कॉइन्स। ओके, ठंडे ठंडे कॉइन्स को इंग्लिश में क्या कहेंगे, 3311063 पर बताएं या फिर कॉल कर दें 4444106 पर। बेहद खूबसूरत गाना भेज रही हूँ मैं अभी दीपाली सहाय की आवाज़ में, तेरे पास मैं, ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी से राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक इस क्रिस की यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं आप और हमने पूछा था जी लेम जेम्स का सवाल और आज का सवाल था कि ठंडे ठंडे कॉइन्स को इंग्लिश में क्या कहेंगे और सही पकड़े एकदम मुझे बहुत सारे आंसर्स आए और सब करेक्ट है दिल खुश हो गया मेरा बाय गॉड विनायक शबी कोको एंड इमोजीज बने हैं कुछ लोगों के नाम पे सिर्फ अपना नाम लिखा करो जब अगर आपके नाम पे से इमोजीज आ रहे हैं ना तो आई शुड नो द नेम ऑल्सो है ना जिसका मैसेज आया है चेरी का मैसेज है जुनैद इज देयर देन आई गॉट 3 मोहम्मद ऑल्सो सो या द करेक्ट आंसर इज चिल्लर Yesterday in the office we all were playing this game एक तो सिमरन का लूडो खरीद के लाई थी ठीक है सो कुछ देर हमने वो लूडो खेला जिसमें मैं जीत गई बाय द वे यस और उसके बाद वी वर प्लेइंग दिस लेम जेम्स वाला थिंग लाइक सिमरन ब्रॉट सम क्वेश्चंस एंड शी वाज रैंडमली थ्रोइंग दोज क्वेश्चंस एट मी कि तू बहुत सवाल पूछती है ना आज देखते हैं तुझे आता है कि नहीं और नहीं आया गाइस तो मतलब अगर आप लोगों को मेरे इन लेम सवालों के जवाब आ रहे हैं तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू Yes, you are amazing. And आज सारा अली खान के हैप्पी बर्थडे है तो उनका एक स्पेशल गाना हो जाए और ये तो बहुत सुंदर भी है यार गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में काफिराना फ्रॉम द मूवी केदारनाथ स्टे ट्यून एंड रेडियो बिंदास
2: जिसमें है बहुत सारा टैलेंट जिसको मिलता है बहुत सारा प्यार सारा का सारा बॉलीवुड करता है जो सारा के चर्चे
3: वही तो मेरी स्वीट हार्ट है
2: उस रॉयल बॉलीवुड प्रिंसेस सारा अली खान को रेडियो ऑल ऑफ विशेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: This is Amaya Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: रईस मूवी से सुखविंदर सिंह और भूमि त्रिवेदी की आवाज में उड़ी उड़ी जाए ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड टाइम्स हैव चेंज्ड एंड हाउ, लाइक जब हम स्कूल के लिए छुट्टियों के बाद समर वेकेशंस के बाद रेडी हो रहे होते थे तो पेरेंट्स को बस यही था कि अगर यूनिफॉर्म चेंज हुई है तो यू हैव टू बाय न्यू यूनिफॉर्म्स, यू नो, शूज एंड एवरीथिंग, बैग एंड बुक्स एंड स्टफ, न्यू लंच बॉक्स, न्यू यू नो स्टेशनरी. एक्साइटमेंट होती थी मुझे उसकी. सो यही जो पेरेंट्स हैं उनका स्ट्रेस होता था, राइट. लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. जिस तरह से बच्चों को रेडी होना होता है स्कूल के लिए उसी तरह से पेरेंट्स को भी रेडी होने की ज़रूरत होती है. एंड दैट इज़ वाई कतर नेशनल लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज कर रहा है रेडी फॉर स्कूल वर्कशॉप्स इन ऑगस्ट. ये जो प्रोग्राम है ये पेरेंट्स को, टीचर्स को और यंग चिल्ड्रन को प्रिपेयर करेगा फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन. क्योंकि यू नो इतना रिलैक्स्ड माहौल हो जाता है वेकेशंस के टाइम पे, यू नो यू आर डूइंग वट एवर, लाइक आप टाइम टाइड नहीं है उस टाइम पे. बट व्हेन स्कूल स्टार्ट तो हर चीज़ वक्त पे होनी चाहिए, फुल रूटीन हो जाता है. तो उसमें जो ट्रांजिट करना है हमें फ्रॉम दिस केयर फ्री और यू नो रिलैक्स्ड वाले इन्वायरमेंट से एकदम रूटीन वाले बिहेवियर में, उसमें वक्त लगता है. So that is why they are organizing this. और इसमें basically children social and emotional well-being के बारे में बताया जाएगा, parents role as a child's first teacher, building independence and essential learning skills. So बहुत कमाल कमाल की चीज़ें होने वाली हैं. August 24th को जो है social और emotional preparedness पे काम किया जाएगा. ये parents के लिए है, caregivers के लिए है और teachers के लिए है जो कि 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके parents हैं या उनका ख्याल रखते हैं. And it covers managing school anxiety, behavioral changes and new routines. Also, it focuses on building children's confidence, independence and emotional skills. These are the, you know, foundation age है ये. इस time पे जो चीज़ें, जो आदतें बच्चों में डल जाती हैं वो लंबे समय तक रहती हैं. And उसके that prepares them, you know, for to have a perception towards life, you know. So बहुत ज़रूरी होता है इस time पर ख्याल रखना. और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे ही कंडक्ट किया जाएगा ये. देन 25th अगस्त को यू आर द फर्स्ट टीचर. दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स एंड द केयर गिवर्स. सो ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से घर पे बच्चे सबसे ज़्यादा वक्त अपने पेरेंट्स और केयर गिवर्स के साथ ही स्पेंड करते हैं. सो ऑब्वियसली दे आर द फर्स्ट टीचर्स. वो उनके बिहेवियर को देख के सीख रहे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं वो उससे सीख रहे हैं. एंड किड्स टेंड टू डू दैट. दे विल जस्ट यू नो पिक योर हैबिट्स और वो फिर वही करते जाएंगे. सो वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड इसमें बच्चों के इमोशनल लैंग्वेज और थिंकिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करना है उस पर बात किया जाएगा. घर में सपोर्टिव एनवायरनमेंट और बैलेंस्ड रूटीन कैसे मेंटेन करना है उस पर बात की जाएगी. एंड ऑल्सो इट विल कवर स्कूल एंजाइटी एंड एनकरेजिंग इंडिपेंडेंस. हो जाता है, been there, done that. And then August 26th or 27th को small skills and big beginnings. ये है 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, एक parent allowed है उनके साथ. And interactive activities होंगी based on Montessori approaches. And it will help children improve independence, attention उनका span जो है वो बढ़ेगा, fine motor skills बढ़ेंगी, communication और language बढ़ेगा, and confidence or emotional readiness for school days. Yes. और ये जो वर्कशॉप है ये दोनों दिन 26 और 27 दोनों दिन है. जब भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है यू शुड गो फॉर दिस वन. और जो भी इंटरेस्टेड है QNL की वेबसाइट पर जाएं और वहां जाके खुद को रजिस्टर कर लें. एंड इट इज सच एन अमेजिंग प्रोग्राम. आई वुड सजेस्ट फॉर ऑल द पेरेंट्स जो कि 3 से 6 साल के बच्चों के यू नो पेरेंट्स हैं या फिर केयर गिवर्स हैं और टीचर्स, दे शुड गो फॉर दिस वन. सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे. स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

अलका याग्निक और शान की आवाज में कल होना हो से कुछ तो हुआ है, डेफिनेटली कुछ हुआ है, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। और कतर ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं अपने रियल एस्टेट रेंटल लॉ में, ये हुआ है, एंड दे विल बी इफेक्टिव फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, दैट इज September 3rd, 2026। सो जो लीज रजिस्ट्रेशन फी थी वो अब फ्लैट 250 रियाल हो गई है। पहले ना 0.5% लगता था उसका एनुअल रेंट का, तो वो 250 से 2500 रियाल तक जा सकता था, मतलब 250 से लेकर 2500 तक भी जा सकता था, बट नाउ देयर इज अ फ्लैट फी ऑफ 250 रियाल। एंड जो कुछ लीज रजिस्ट्रेशन वायलेशंस होते थे उनको अगर सेटल करने के लिए उनका जो फाइन होता था, फी होता था, वो 5000 से अब सीधा 1000 रियाल कर दिया है। That is so good and जितने भी you know landlords हैं या फिर renters हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, और जो rental disputes हैं उसकी प्रोसेस भी काफ़ी क्लियर कर दी गई है। सो देर इज़ दिस रेंटल डिस्प्यूट सेटलमेंट कमिटी, वो हैंडल करेंगी जितने भी लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स होंगे। एंड लोगों को लाइक पीपल हैव टू अप्रोच द कमिटी फर्स्ट बिफोर टेकिंग अ रेंटल डिस्प्यूट टू द कोर्ट। कोर्ट जाने से पहले यू हैव टू गो टू द कमिटी। अगर कमिटी का आपको डिसीजन ठीक नहीं लगता है एंड यू वॉन्ट टू अपील अगेंस्ट दैट, देन यू कैन टेक इट टू द कोर्ट। सो चीज़ें काफ़ी आसान होने वाली हैं, और ये बेसिकली इसलिए किया गया है सो दैट जो रेंटल रजिस्ट्रेशन है वो सभी के लिए चीपर और ईजियर हो जाए, और सो दैट पीपल ऑफिशियली रजिस्टर देयर लीसेस, यू नो, ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए करा गया है। तो बधाइयाँ इस चीज़ के लिए, एक बढ़िया गाना भेजो उसके लिए तो ज़्यादा वाली बधाइयाँ, क्योंकि आतिफ असलम की आवाज़ में तू जाने ना, ओए ओए सैड नहीं होना है, ठीक है, इन्जॉय करने का है। स्टे ट्यून्ड एंड जी विंदास।

0: KLIN number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: You're listening to Radio 106.3 FM. Dinesh, aapke saath Bindas Mornings chal raha hai yahan par, and I've found something really cool. So, you can take it as word of the day as well, theek hai?
1: Ye hai, chalti phirti dictionary.
0: And the word is metanoia. It's a Greek word, aur iska spelling hai M-E-T-A-N-O-I-A. And हम सब ने अगर ये अपनी लाइफ में सीख लिया ना तो किसी भी प्रॉब्लम में हम कभी भी यू नो वरिड या स्ट्रेस्ड नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं बेसिकली. सो मेटानोइया इज बेसिकली अ डीप चेंज ऑफ माइंड या फिर अ वे ऑफ थिंकिंग कह लो कि कोई भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में उसमें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार इससे निकलने के लिए क्या करूँ स्टार्ट थिंकिंग कि ये मुझे क्या सिखा रही है क्या सिखाना चाहती है. We all know that whatever happens in life, if it is bad or it is good, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है, right? तो हम ना वो जो lesson के ऊपर focus करेंगे ना, तो problem हमें उतनी बड़ी लगेगी नहीं. And once we get into that metanoia वाला mindset, भाई कोई नहीं रोक सकता. बड़े से बड़ा इंसान, even Elon Musk talked about it once, and he also has this transformative way of seeing things. कि if there is a problem, I would see, obviously I'll try to find a solution, but I will also try to see ki ye mujhe sikha kya rahe hai, what it is trying to teach me, and then taking that forward. And it is such a cool thing, and I'm just wondering ki humne agar ye apni life mein implement kar diya to kitni aasan ho jayengi cheeze, socha hai aapne? Yes, to socho, lot kar aati hu kuch der mein, stay tuned on Jio Bindas.

लकी अली साहब की आवाज में सफरनामा, ब्यूटीफुल ट्रैक यार, बहुत सुंदर गाना है। तनिषा के साथ सुना आपने रेडियो 106.3 FM पर। बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, और सफरनामा से बहुत रियलाइजेशन हो रही हैं आज मुझे। हैं एक और रियलाइजेशन हुई कि इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, आज हम जहाँ पर हैं राइट नाउ एट दिस मोमेंट, से आई एम ह्योर रेडियो ऑलिव कतर में आपसे बात कर रही हूँ, मॉर्निंग शो कर रही हूँ। कुछ साल पहले सपना था ना ये, आज ये अचीव कर लिया है, आज मैं यहाँ पर हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। सेम फॉर यू, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, एक टाइम पे ये सपना था एंड आपने वो अचीव कर लिया है, आप हो आज यहाँ पर। सो उसके लिए ग्रेटफुल होना तो बनता है, लेकिन आगे जो सपने हैं, यहाँ तक आए हो तो वहाँ तक भी पहुँचोगे ना यार। बस ये सोच के कि यार अभी तो चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही है, मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आई एम जस्ट गोना गिव अप, नो, गिविंग अप इज़ नेवर एन ऑप्शन। अपने एफर्ट्स डालते जाओ, मे बी थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू इज़ तपती हुई गर्मी में, स्टे ट्यून ऑन रेडियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

सुखविंदर सिंह साहब की आवाज में रंजना मूवी से भी आप मिलेंगे ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ. बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड यूएई में एक नया रूल आ गया है जी. सो वो भी म्यूजिक चलाने के लिए. सो जितने भी बिजनेसेस हैं दिसंबर से दे विल हैव टू टेक अ लाइसेंस टू प्ले म्यूजिक. यस दिसंबर 1st 2026 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. कमर्शियली जो भी म्यूजिक प्ले करना चाहता है उनको कॉपीराइटेड म्यूजिक के लिए एक लाइसेंस लगेगा एंड अगर वो नहीं वो फी पे करते हैं लाइसेंस नहीं लेते हैं तो देयर विल बी रेपरकशंस. और ये जो रूल है ये कवर करता है रेस्टोरेंट्स और कैफेज को, होटल्स को, शॉपिंग मॉल्स को, जिम और फिटनेस सेंटर्स, एयरलाइंस, रेडियो, टीवी वो तो ऑलरेडी है एंड कॉन्सर्ट और इस तरह के जो भी इवेंट्स है. और कोई एक फिक्स्ड फी नहीं है किसी के लिए भी. इट विल वैरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, मतलब उसका क्या स्केल है बिजनेस का उसके हिसाब से इट विल वैरी फॉर डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट बिजनेसेस. और ये बेसिकली जो कॉपीराइट्स हैं उनको यू नो सिक्योर करने के लिए और जो आर्टिस्ट हैं उनको और भी सिक्योरिटी और उनके काम का जो एक यू नो दे नीड टू गेट द क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड बिकॉज आई एम लॉस्ट इन दिस फैक्ट कि अभी म्यूजिक चलाने के लिए कैफे में बैठे हो आप और वहाँ पे म्यूजिक नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइसेंसिंग फी अभी तक पे नहीं करी है. यार एब्सोल्युटली क्रेजी. एट टाइम्स देर आर फ्यू कैफेज जो कि इतना सुंदर सुंदर म्यूजिक चलाते हैं समहाउ वो आपके म्यूजिक टेस्ट के साथ मैच हो जाता है एंड दैट बिकम्स योर गो टू प्लेस. मेरे साथ तो ये कई बार हुआ है. बट वॉट इफ अब आपको वो सुनने नहीं मिलेगा? It is crazy, unfathomable. But yeah, this is going to happen in UAE from December 1st. Lekin, yahan pe to aap sun sakte hain badhiya badhiya music. Dekho, itna sundar gaana play karne wali hu main aapke liye abhi. Kitna sona from the movie Bhag Johnny. Stay tuned and GV.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

Arijit Singh ki awaaz mein Luru movie se Hardam Hamdam beautiful track only on Radio 11.6.3 FM Danisha aapke saath Bindaas mornings chal raha hai yahan par and I'm gonna tell you a really cool story right now kyunki main excited hu yaar iske liye bahut bahut pyari story hai so there was this man called Arthur T. Demolis ठीक है एंड वो सीईओ थे मार्केट बास्केट के जो कि यूके की एक ग्रॉसरी चेन है सुपरमार्केट चेन है ठीक है एंड कुछ फैमिली डिस्प्यूट के चलते ही वाज आर्थर जो थे आरटीटी उनका निकनेम है और वो सीईओ थे उस मार्केट बास्केट के सो कुछ फैमिली डिस्प्यूट के चलते उनको उनके सीईओ की पोजीशन से रिमूव कर दिया गया एंड RT was well known for his management style जो कि यू नो employees पे बहुत focus करते थे profit sharing करते थे bonuses promoting people within the company so वो बहुत you know pro employee kind of manager थे and everybody loved him like the entire staff so जब पता चला staff को कि RT को ऐसे निकाल दिया गया है from his CEO का position thousands of employees I'm telling you thousands okay sab walk off kar gaye apni job se they were like we will not come back until or unless you bring RT back as the CEO nahi aaye unhone apni jobs ki parwah ki hi nahi sab ne walk off kar diya and not just the employees not just the staff wahan ke customers us locality ke customers they also boycotted this supermarket they were like nahi RT should come back because wahan ka customer service itna amazing hai wo RT ki wajah se hi hai so we want him back otherwise hum nahi aayenge aapke store pe and shelves were empty for a while you know deliveries nahi ho rahi hai koi operation nahi ho rahe kyunki staff hi nahi hai aur agar koi you know delivery ट्रक आ भी रहा है तो लोकल्स जो हैं उसको क्रॉस ही नहीं करने दे रहे हैं कि नहीं यू कांट गो सो उनकी सेल्स 90% लो हो गई बिकॉज ऑफ दिस बॉयकॉट एंड दिस प्रोटेस्ट एंड हार के उन्हें आरटी को वापस लेकर आना ही पड़ा लेकिन इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रोटेस्ट राइट आप इसके बारे में सुनोगे तो क्योंकि यूजुअली employees would care about their company ठीक है एक CEO गया दूसरा आ जाएगा big deal यार है ना but यहाँ पे उन्होंने परवाह नहीं करी वो अपने CEO को इतना पसंद करते थे बोला कि जॉब जाती है तो जाए अगर RT नहीं है तो हम भी नहीं है and that was such a beautiful moment 6 हफ्ते के लिए ये वाला जो protest था ये चला था and that shows कि you know आप employees का time तो खरीद सकते हैं salary देकर पर उनकी लॉयल्टी गेन कर पाना अर्न कर पाना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम और कई सारे सीईओस यहीं पर मात खा रहे हैं बट अभी हम सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास रेडियो

0: खास मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: तमाशा मूवी से हीर तो बड़ी सैड बिल्कुल नहीं है जी, आपको पता है हीर तो काफी हैप्पी है। यॉल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम शाप के सैड बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। और आज है इंटरनेशनल यूथ डे, 12th of August। ओके, सो आज से शुरू हो रहा है प्लास वेंडोम में इंटरनेशनल यूथ डे का सेलिब्रेशन। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो 12 से लेकर 16 अगस्त तक, 16 अगस्त तक ये चलने वाला है। सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक आप वहाँ जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट काफ़ी सारी बैक टू स्कूल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी हैं एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो बीच क्लीनिंग एंड आइलैंड क्लीनिंग स्टफ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, यू नो यू वांट टू डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द क्लीनलीनेस, फॉर आर सराउंडिंग, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है ये 8 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक, हर सैटरडे को ये होने वाला है, ठीक है। सो आप वो चेकआउट कर सकते हैं एंड यू शुड टेक पार्टिसिपेट इन दैट। ऑल्सो कतर में कुछ ट्रेंड होने लगा है फिर से। कुछ वक्त पहले सऊदी से जो एक ट्रेंड आया था सोशल मीडिया पर, वो किड्स की ब्लर सेल्फीज विद ब्रांड्स, अभी एक नया ट्रेंड आया है दैट इज वेरी चाइल्ड लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफ देयर पोस्टर्स और वट एवर दे वॉन्ट टू पोस्ट ऑन देयर इंस्टाग्राम और सोशल्स। सो सारे ब्रांड्स ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है। आई थिंक कदर कैलेंडर वॉज द फर्स्ट ब्रांड जिन्होंने यू नो दे पोस्टेड समथिंग इन दैट काइंड ऑफ डिज़ाइन एंड इट जस्ट बिकेम अ ट्रेंड। दे वर लाइक हमारा जो डिज़ाइनर है वो छुट्टी पर है, सो दिस इज़ वॉट वी कैन डू नाउ, चेक दिस आउट। और ट्रेंड बन गया सडनली, सब ने पोस्ट करना शुरू कर दिया, भले ही उनके डिज़ाइनर ही वो बना रहे हैं पर कह रहे हैं हमारा डिज़ाइनर छुट्टी पे है। तो या आजकल सोशल मीडिया क्रेजी होता जा रहा है, बट आपको क्रेजी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत प्यारा सा गाना भेज रही हूँ, सारा अली खान स्पेशल, ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास, जिसमें है बहुत सारा टैलेंट, जिसको मिलता है बहुत सारा प्यार, सारा का सारा बॉलीवुड करता है जो सारा के चर्चे,
1: वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
0: उस रॉयल बॉलीवुड प्रिंसेस सारा अली खान को रेडियो ऑल ऑफ विशेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: सुखविंदर सिंह की आवाज में छैया ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा के साथ आप बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर टिकटॉक में YouTube की बात करते हैं। हिला के रख दिया है YouTube ने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को। क्यों? क्योंकि February 1, 2027 से जो एक वॉच टाइम 4000 होना था, यू नो, फॉर मोनेटाइजेशन, अब वो 8000 वॉच आवर्स कर दिया है। सो 8000 आवर्स की वॉच हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी YouTube चैनल की। लाइक यू नो द वीडियोज शुड हैव टोटल अमाउंट ऑफ टाइम दैट शुड बी 8000 आवर्स, और या फिर 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज होने चाहिए। शॉर्ट्स में जो व्यूज हैं वो 20 मिलियन होने चाहिए तो ही मोनेटाइज हो सकता है, और 1000 सब्सक्राइबर्स तो मिनिमम है ही। तो अभी क्योंकि चीज़ें आसान हो गई थी, एवरीबडी वॉज यू नो मूविंग टुवर्ड्स यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएशन, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो जाता है एंड लाइक इट्स अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ मनी, राइट? तो बहुत ही ईजी हो गई थी चीज़ें, तो लाइक कि चलो थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, अब देखते क्या होता है। सो गुड लक टू ऑल द यूट्यूब क्रिएटर्स, द व्लॉगर्स, कॉन्टेंट क्रिएटर्स, इंशाल्लाह हो जाएंगे 8000, नो वरीज यार। सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: तनिषा
1: मस्त मूवी से सोरिंग अमर सुनिधि चौहान की आवाज में रुकी रुकी सी जिंदगी झट से चल पड़ी। ऐसा ही होता है यार, पता ही नहीं चलता है। हम इंतजार करते रहते हैं और वो दिन आ जाता है एंड वट एवर वी थॉट वो हो भी जाता है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 11.06.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। और रिमाइंड करवाने आई हूँ, रेडियो 11.QA इज द हैंडल। इफ यू हैवंट गो एंड फॉलो राइट अवे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, सब जगह पे फॉलो कर लो। और हमने कल एक वीडियो पोस्ट किया है, चिल कर रहे थे हम ऐसे ऑफिस में, तो बस एक वीडियो बना लिया है, जाओ जरा उसको देख कर आओ, क्योंकि मुझे तो इतनी हंसी आई उसे देख के, सब ने भर भर के ओवर एक्टिंग करी है उसमें। सो डू चेक आउट दैट वीडियो, उस पर कॉमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, हमें पता चलना चाहिए कि चीज़ें आप तक पहुंच रही है, ठीक है। और कोई भी बात शेयर करना चाहते हो तो यू नो द नंबर 3311106 3। एंड इन केस यू आर ट्रैवलिंग और समबडी एल्स इज ट्रैवलिंग और लग रहा है कि यार अब मैं रेडियो ऑलिव नहीं सुन पाऊंगा, ऐसे कैसे, वी हैव एन ऐप। आप ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो ऑलिव का प्ले स्टोर पर जाकर एंड यू कैन लिसन टू अस एनीवेयर इन द वर्ल्ड लाइव, यस। और वहीं से आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। सो सब कुछ ऐसी हर चीज का ना सोल्यूशन निकाल के रखा है, आपने बस बताना है कि तरीके ये दिक्कत हो रही है। आई एम सिटिंग हियर, मेरी जान आप क्यों स्ट्रेस लेते हो यार, चिल करो। चलो बड़े गाना भेज रही हूँ सोनिगम की आवाज में, शुक्रन अल्लाह फ्रॉम द मूवी कुर्बान। स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास।

0: Tanisha.
1: दिलजीत दोसांझ की आवाज में लवर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. 9:49 हो चुका है क्लॉक में. दैट सेज कि मेरे जाने का वक्त हो गया है. जाऊंगी नहीं तो कल थर्सडे सुबह 6 बजे कैसे आऊंगी मेरी जान. वेरी एक्साइटेड फॉर थर्सडे एज यूजुअल. वी गोना हैव एन अमेजिंग डे टुडे एंड फिर सुबह कल तो मैं सॉर्ट कर ही दूंगी. आपने उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, बस चिल करने का है. कुछ भी ऐसा हुआ ना जिसने ऐसे दिमाग की जो वो एक स्क्रू है उसको हिलाया तो रिएक्ट नहीं करना है. 2 सेकंड का पॉज लो उसके बाद सोचो. 6 सेकंड एक्चुअली, 2 कम होता है, 6 लो. 6 सेकंड का पॉज लो और सोचो क्या मेरा रिएक्शन इस पर ज़रूरी है. नहीं है तो अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. अब हर चीज़ पर हम रिएक्ट करने लग गए तो काम कम करेंगे अपना, ठीक है? सो हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ. डू नॉट स्ट्रेस ओवर लिटिल थिंग्स. अपना ख्याल रखें क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो बोलना ही भूल गई मैं, बहुत सारा सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलना है और बहुत सारा पानी पीते रहना है. स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान, ठीक है? और सुनते रहिए रेडियो ऑल इन जियो

0: करिए ना, कौन रोक रहा है आपको गुड मॉर्निंग वाला मैसेज मुझे करने से। ताल मूवी से सुखविंदर सिंह की आवाज में ये ट्रैक आपके रेडियो सिट्स पर आया और मैं आ गई हूँ अपना शो लेके। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर जल्दी से गुड मॉर्निंग कह दो, हाय हेलो कर दो, ताकि मेरी जो ये मॉर्निंग की मतलब ऐसे शुरुआत में कर रही हूँ वो थोड़ी वाइब वाली हो जाए एंड आगे आपके लिए जो अमेजिंग कॉन्टेंट मैं लेकर आई हूँ वो आपसे मैं शेयर कर सकूँ। देखो बहुत अमेजिंग गॉसिप्स मैं लाई हूँ आपकी यू नो हेल्थ को लेकर, कुछ फैक्ट्स लेकर आई हूँ और आज किसी एक बहुत ही स्पेशल जो है हमारे फेवरेट एक्टर का बर्थडे है, सो वो भी जो है सेलिब्रेट हम करने वाले हैं, सो उनसे रिलेटेड भी काफ़ी सारी बातचीत जो है वो हम करेंगे। सो अगर ये सारी बातें आप चाहते हैं कि मैं असली वाइब के साथ अच्छे मूड के साथ करूं आपसे, तो जल्दी से जो है मुझे गुड मॉर्निंग हाय हेलो जो है वो कर दीजिए 3311063 पर। अगर ज़्यादा जहमत नहीं उठानी है तो बस ऑडियो नोट भेज दो यार, हाय हेलो ठीक है कोई बात नहीं, एक ऑडियो नोट भेज दो मुझे तो खुशी हो ही जाती है। बाकी आज बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों पे हम बातचीत करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड रहना है, वॉल्यूम बढ़ा लो एंड फिलहाल सारा अली खान जी का बर्थडे है आज, तो बस उन्हीं के गाने से जो है शो की शुरुआत करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, वॉल्यूम बढ़ाइए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: जिसमें है बहुत सारा टैलेंट, जिसको मिलता है बहुत सारा प्यार, सारा का सारा बॉलीवुड करता है जिस सारा के चर्चे,
2: वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
1: उस रॉयल बॉलीवुड प्रिंसेस सारा अली खान को रेडियो ऑल ऑफ विशेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alcor.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:13, दैट इज 10:13। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
3: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
3: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
3: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
5: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण।
6: दीपिका पादुकोण,
5: रेडियो ओलिव 106.3।
7: रेडियो ओलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: मैं ना इस बात से अभी तक शॉक्ड हूँ कि मैंने आपको ये मूवी अभी तक कैसे रिकमेंड नहीं की। मूवी का नाम मसान और बहुत ही अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफ पर। कभी डिटेल में इसका जो है रिव्यू करूंगी एंड आपको रिकमेंड करूंगी कि जो है सबसे बेस्ट टाइम क्या हो सकता है इसको देखने का, या किस किस के साथ देख सकते हो, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस मूवी को और ज़्यादा स्पेशल बनाती है, तो कभी और हम जो है आपको रिकमेंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो है अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं मौसम के मामले की। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, सब कुछ एकदम परफेक्ट चलता रहता है जब आप सुबह उठते हो ऑफिस के लिए, ठीक है। आप टाइम पर उठ गए हो, आप लेट बिल्कुल नहीं हो, आपने टाइम पर शावर ले लिया है, आपके बाल जो है बहुत बढ़िया लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे मूड में हो, आपकी नींद पूरी हो गई है, कपड़े एकदम बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम पर जो है आपकी गाड़ी के पास पहुँचने वाले हो, एंड देन आपको मौसम हिट करता है। आपको रियलाइज होता है कि ना अब बाल जो परफेक्ट थे वो अब परफेक्ट हैं, ना जो कपड़े आपने पहने हुए थे वो आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं, बिकॉज आपने ब्लैक कलर पहन लिया है। इन इस हीट में ब्लैक कलर आपको अंदर ही अंदर जो है खा रहा है। एंड कोई बात नहीं था गाइज, ये आप अकेले नहीं हो जो ये फील कर रहे हो, सबको यही फील हो रहा है। 42 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर है दोहा में, एंड आज का हाइस्ट टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाला है। और बाकी देखो, इस गर्मी के चलते मुझे लगता है एक ही चीज जो मुझे असली ठंडक पहुंचा सकती थी वो थे आपके मैसेजेस। तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्यूट मैसेजेस जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ खान जी ने मैसेज किया है, अविनाश सिंह जी ने एक ऑडियो नोट भेजा है, एंड रेजुल हसन जी ने जो है वो वेलकम टू द शो लिखा है, एंड ऐसे ही बहुत सारे मैसेजेस आए। तो ये सारे मैसेजेस जो है ये हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में। तब तक एक काम करो ना, आप लोग भी मैसेज कर दो मुझे 3311063 पर। फिलहाल पल पल तेरी याद गाना जो है वो आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, तो मुझे भी याद करो और जल्दी से मैसेज कर दो 3311063 पर। कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपकी नजर आपकी रेडियो सेट पे, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, कहते रहो जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

अब आशिकी कहना चाहते हो तो आशिकी कह लो, कोई बात नहीं। वैसे तो बंदी का नाम जो है वो आपकी कशिश है। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलम पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, मैंने भी आप लोगों से इतना ही मांगा था कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ आपकी लाइफ को मस्त बनाने की, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो यार, मेरे को मैसेज करो। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे हैं, तो आइए एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। अस्मा जी ने मुझे कहा है, गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ डे फुल ऑफ लाफ्टर एंड चेरिश्ड मोमेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद रमा जी ने जो है वो लिखा है कि नेपाल से हैं, हेलो रेडियो ऑलिव टीम, एंड इन्होंने पहले रेडियो में जो है वो काम किया हुआ है, सो बिल्कुल हम आपको जो है किसी दिन रेडियो स्टेशन ज़रूर बुलाएंगे। हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ आते हैं, यहाँ पर फोटोज़ खींच के जाते हैं, सो बिल्कुल रमा जी मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं हमसे मिलने के लिए कभी भी। एंड मोहम्मद यूसुफ खान जी ने जो है लिखा है, अस्सलाम वालेकुम कशिश, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने पूछा है मुझसे कि आप कैसे हो, हैप्पी वेंसडे, थैंक यू सो मच मुझे दिन याद दिलाने के लिए कि आज वेंसडे है, और वेंसडे जो है ये याद आ ही गया है, तो ये भी याद आ गया है कि यार बस एक और दिन थर्सडे और काम करना है, फिर तो फ्राइडे आ जाएगा। एंड कॉकटेल टू का गाने से शुरुआत नहीं की, बिल्कुल आज सारा अली खान जी का बर्थडे।

तो हमने उस गाने से शुरुआत की थी। अविनाश सिंह जी ने मुझे ऑडियो नोट भेजा है, उन्होंने लिखा हेलो हेलो कशिश हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ऐसे अमेजिंग गाड़ी जो है वो ड्राइव करते हुए हमें अमेजिंग सा ऑडियो नोट भेजने के लिए इमरान ने जो है मैसेज किया हुआ है, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, एंड मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले, रजाउल हसन जी ने जो है वो कहा था वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो, मतलब मेरे ही शो में मुझे वेलकम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें गानों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एंड जो भी लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, फोन उठाओ 3311063 पर मैसेज कर दो आपकी कशिश को। एंड फिलहाल बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो ये गाना इंजॉय करो वॉल्यूम बढ़ा के। मैं आती हूँ जरा आने के बाद, क्योंकि आपको ये बताना है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। स्टे ट्यून रही, मोहित चौहान की आवाज में ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। स्टे ट्यून जियो बंदा।

2.0 बेल बॉटम मूवी से आपने एंजॉय किया। और यार ये गाना ना फुल्ली ऐसे फोर्स फिटेड अलग से ही पता चल जाता है कि इस गाने की कोई खास जरूरत नहीं थी मूवी में, लेकिन बस क्योंकि वायरल करना था इसीलिए ऐड कर दिया। आप इसका ओरिजिनल गाना जरा याद करने की कोशिश करो, आपको याद आएगा कि मनिंदर भुट्टर का ये जो गाना था ये उस वक्त इंडिया में म्यूजिकली, टिकटॉक जो था वो पहले म्यूजिकली था, तब सब कितना ज़्यादा पसंद करते थे इसको, कितनी सारी वीडियोस बनाते थे एंड सब लोग तो एक दूसरे को प्यार से बब्बू बब्बू बुलाने भी लग गए थे। फिर उन्हें पता भी नहीं था कि ये जो है ये सिंगर हर गाने में ये वर्ड यूज़ करता है, उन्हें लगता था ओ ये तो नया लव वर्ड है ये। सो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार गानों की ज़रूरत होती नहीं है मूवी में, लेकिन बस उसको जो है कि भाई वायरल बनाना है इस मूवी में, एक आध तो अच्छा गाना होना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि ये एंड क्रेडिट सीन में जो है ऐड कर देते हैं। फिलहाल देखिए बहुत अमेजिंग वाली बातचीत जो है वो अभी हमें जारी रखनी है। आपको ये बताना है कि यार आखिर आप अपना स्ट्रेस जो है वो किस तरीके से कम कर सकते हो। और तनीषा जो है उनकी एंट्री हो चुकी है, मैं स्ट्रेस कम करने का नाम मैंने लिया है लेकिन मैं हूँ इनकी लाइफ का असली स्ट्रेस, इनको ज्यादा जरूरत है ये जानने की। तो तनीषा अभी स्टूडियो में है, मैं आप लोगों के साथ इनको भी बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस कम करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर दो, थका दो, चाहे आप डांस करके करो, चाहे आप जो है वॉक करके करो, चाहे आप कोई भी वर्कआउट करो, बस अगर अपनी बॉडी को आप थका दोगे तो आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा। पता नहीं कौन से साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये लिखा है लेकिन ऐसा है, एक बार ट्राई करो, अगर आपके साथ काम करता है तो बता देना मुझे, मैं भी ट्राई कर लूँगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और मैं बिल्कुल नहीं, मतलब सिनोनिम तो हो ही नहीं सकता, हम क्या बोलते हैं यार तनीषा उसको, अपोजिट्स, यस मेरे नाम का अगर कुछ अपोजिट है तो वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिलहाल ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:08, दैट इज 11:08। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता।
3: नीना गुप्ता,
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: यार अगर नंबर ही चाहिए तो मैं तो कितनी बार बता चुकी हूँ, आप ही लोग नहीं सुन रहे हो। 3311063 ये है आपकी कशिश का नंबर, तो जल्दी से आओ, मैसेज कर दो। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी एक और नंबर, जिस नंबर ने जो है आपके एंटरटेनमेंट का जिम्मा उठा के रखा है वो है 106.3 रेडियो ऑलिव, और लाइफ मस्त है शो जो है वो मैं लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, आज इंटरनेशनल यूथ डे यानी युवा दिवस अगर मैं हिंदी में कहूँ तो, अब देखो यार ये यूथ का कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी अलग है। कुछ लोग जो है वो दिल से अपने आप को यूथ मानते हैं और कुछ यूथ जो है वो काम के बोझ के तले इतना दब गए हैं कि खुद को ओल्ड फील करते हैं। सो आज बस मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ कि ये यूथ आखिर होता क्या है, ये एज लिमिट से जो है वो बंधा हुआ है या हरकतों के हिसाब से होता है या सोच के हिसाब से होता है, आखिर ये यूथ होता क्या है। क्योंकि एक रिसर्च जो मैं अभी पढ़ रही थी रिसेंटली, उसमें ये लिखा था कि यूथ की जो उम्र है वो अब 32 ईयर्स तक हो गई है, यानी ये कहा गया है रिसर्च में कि आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 32 इयर्स तक होता रहता है एंड कई लोगों का उसके बाद भी होता है, तो तब तक आपको यंग एंड यूथफुल जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। अब मुझे जो है इसमें काफ़ी सारे डाउट हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे ऐसे जानने पहचानने वाले लोग हैं जिनमें जो लोग अब 40 के हो गए, 45 के हो गए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी यू नो उनकी सोच काफ़ी प्रोग्रेसिव है एंड वो काफ़ी यू नो काफ़ी चीज़ों में एक्टिव रहते हैं। लेकिन वहीं मुझसे जो है एक दो साल छोटे जो मेरे भाई बहन हैं या फिर मेरे दोस्त जो हैं, वो लोग जो है काफ़ी लेज़ी फील करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। सो वही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हम 42 ईयर्स वाले इंसान को यूथ कंसिडर कर सकते हैं और 18 इयर्स वाले को नहीं कंसिडर कर सकते, क्या ऐसा कुछ है? आपको क्या लगता है कि यूथ की जो एज लिमिट है वो कब तक होनी चाहिए, कब तक आप खुद को यूथफुल कह सकते हो, कब तक खुद को युवा कंसिडर कर सकते हो, बताइए मुझे 3311063 पर आपके रेडियो सेट्स पर आपकी कशिश जो है अमेजिंग गाने आपको सुना रही है एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज यही रहने वाला है। तो जल्दी से फोन उठाओ, मैसेज करो 3311063। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए मेरे साथ जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

खुशी खुशी कभी गम से मेरा फेवरेट गाना शावा शावा आ गया था आपके रेडियो सेट पर, आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड मैं बीच में मतलब मुझे पता नहीं क्या क्या हो जा

था कि यार आज इंटरनेशनल यूथ डे है, यूथ डे, युवा दिवस, कुछ भी कह सकते हैं आप. सो युवा की डेफिनेशन क्या है आखिर, यूथ की डेफिनेशन क्या है और एज लिमिट क्या है यूथ कहलाने की, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो दिल से यंग होते हैं एंड काफ़ी सारे यंग लोग जो है मतलब जिनकी उम्र कम है लेकिन वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतना दब गए हैं कि वो यूथ कहलाना ही नहीं चाहते खुद को. तो बताइए यार आप लोगों को क्या लगता है. वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा है कि यार कशिश देखो दिल से होता है बंदा यंग, ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर. और अगर मैं बात करूँ रिसर्चर्स का भी यही कहना है कि आपका ब्रेन जो है वो डेवलप होता रहता है, जब तक आपका ब्रेन जो है डेवलप हो रहा है तब तक आप खुद को यूथ कंसिडर कर सकते हो. वैसे यूथ जो है वो अक्सर एक यंग जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है जिनकी सोच इवॉल्व हो रही होती है टाइम के साथ एंड जो प्रेजेंट टाइम के लोग कहलाते हैं. मतलब जब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं आप उन्हें फ्यूचर कहते हैं एंड जो जो है थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं उम्र में, जिनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, जिनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं कि उनका टाइम और था, उनका दौर अलग था. लेकिन जो जिनका प्रेजेंट दौर होता है, जिनका प्रेजेंट टाइम होता है, उन्हें यूथ कहा जाता है एंड आप और मैं यूथ का ही एक पार्ट है. सो बस यही बात जो है हम कर रहे थे एंड काफ़ी सारे लोगों ने यही कहा है, बल्कि सब लोगों ने यही कहा है जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि यार कशिश एज इज़ जस्ट अ नंबर, यूथ तो आप अपने दिल से फील करते हो, बाकी जेंजी जो है वो खुद को यूथ कहते हैं आजकल. सो जेंजी और मिलेनियल की डिस्कशन तो खैर हम ना ही चालू करें तो अभी बेहतर रहेगा. आज इंटरनेशनल यूथ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम एंड आपके आसपास कोई भी यंग इंसान है तो उन्हें पकड़िए, और अगर आप यंग नहीं हैं आपको ऐसा लगता है तो आप उन्हें विश कर सकते हैं. फिलहाल धक धक गाना जो है नौटंकी साला से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए. बाकी बहुत अमेजिंग बातचीत जो है वो हम जारी रखेंगे. स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.

देखिए, मैं रहूं यहाँ या ना रहूं, हो सकता है मेरा शो खत्म हो जाए और मैं चली जाऊं यहाँ से अभी बाहर खाना खाने के लिए, लेकिन आपको मुझे मिस करते रहना है। बस ये गाना सुनाने का मेरे मतलब यही मोटिव था मेरा बेसिकली। अभी वैसे कहीं नहीं जा रही हूँ, अभी एक और आर हमें जो है फन करना है। वैसे एक बहुत ही फनी जो है मैसेज मेरे पास आया है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। सो मुझे जो है एक सर लिख रहे हैं कि कशुश, आपका रेडियो पे आने वाला हर गाना फेवरेट गाना कैसे हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले शावा शावा पे मैंने यही कहा था और गानों पे भी मैं यही कह देती हूँ कि ये था मेरा फेवरेट गाना आपके लिए। सो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि सर कि मेरा ना हर गाना फेवरेट होता है, एंड जो गाना मुझे नहीं पसंद होता है मैं उसको जो है ट्रोल कर देती हूँ, रोस्ट कर देती हूँ आप लोगों के सामने कि यार ये लिरिसिस्ट ने क्या सोच के लिखा होगा, कैसा होगा ये गाना। ठीक है, तो आप चिल कीजिए, मेरे जो जितने भी गाने मैं आपको सुना रही हूँ सब मेरे फेवरेट गाने हैं। फिलहाल जो है इसी बात के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर जो है वो आपको सुनाना चाहिए मुझे। कॉकटेल टू का नया नवेला गाना है ये, सो इसे इंजॉय करके ज़रा वापस आइए, उसके बाद बात करेंगे हम सारा अली खान के बर्थडे पे उनकी कुछ अमेजिंग मूवीज की। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जी उपन्यास।

ऑफकोर्स गजब का दिन तो होगा ही यार, अमेजिंग अमेजिंग बातचीत जो है जब हम करते रहेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश, आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है। वेलकम जी। अब देखिए यार, कई बार ना ऐसा होता है कि लाइफ में ना हमें कुछ जगहों पे अटका अटका सा फील होता है कि यार कुछ आगे करना है, कुछ ब्रेन रॉट सा ही देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा आती हूँ और कुछ ऐसी मूवीज रिकमेंड करती हूँ जिससे आप जो है कुछ टेक अवे लेकर जा सकते हैं। सो फिलहाल जो है मैं आपको बता रही हूँ सारा अली खान की कुछ अमेजिंग मूवीज। सो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं ज़रा के जरा बच के, विकी कौशल के साथ उन्होंने बहुत ही अमेजिंग अपना पेयर दिखाया है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें अतरंगी रे की, सो अतरंगी रे इज अ वेरी नाइस मूवी, वो भी आप देख सकते हैं। एंड उनकी डेब्यू मूवी केदारनाथ जो है वो भी बहुत ही अमेजिंग थी। सो एक बार सारा अली खान का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ये मूवी एक बार चेक कर लेनी चाहिए। तो जाओ यार जल्दी से देखो ये मूवीज, और बाकी आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: 106.3 FM.
1: आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे 12:12, दैट इज 12:12। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: यस, गाने का नाम घर जब हैरी मेट सेजल मूवी से। अब देखिए, घर की बात ही कुछ और होती है। कुछ लोग जो घर से दूर रहते हैं उन्हें शायद घर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, एंड सबसे ज्यादा वैल्यू उन लोगों को होती है घर की जो घर बना रहे होते हैं, जो एक एक पाई जोड़ जोड़ कर अपने घर को डिजाइन करते हैं और ये सोचते हैं कि यार यहाँ ना एंट्रेंस होगा, यहाँ बालकनी होगी, खिड़की ऐसे लगाएंगे, फ्लोरिंग ऐसे करेंगे, कितनी मेहनत करते हैं यार उसके लिए। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, एक रिसर्च जो है मैं कल पढ़ रही थी, जहाँ पर ये लिखा था कि आजकल लोग जो है वो इस फैक्ट पे काफी कम बिलीव करने लगे हैं कि मेहनत से सक्सेस मिलती है। लोगों को जो है अब ऐसा लगता है कि सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं होती है सक्सेस पाने के लिए, आपको स्मार्ट होना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब इंटरनेट पे एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि सक्सेस पाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क। आप कौन सी टीम में है बताइए मुझे 3311063 पर। फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बिना दो पहियों के एक मोटरसाइकिल या एक साइकिल नहीं चल सकती, बिल्कुल उसी तरीके से सक्सेस की गाड़ी भी आगे तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क साथ साथ नहीं चलता। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो लेकिन आप स्मार्ट नहीं हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो और हार्ड वर्क रह जाए तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो सही जो है मात्रा में जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

राजला मूवी का टाइटल ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं। अब देखिए यार, आज ना वर्ल्ड एलिफेंट डे भी है और अभी कुछ दिन पहले ही ना सोशल मीडिया पे वो प्यारे प्यारे से गोलू मोलू से एलिफेंट्स जो हैं वो काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे। स्पेशली बेबी एलिफेंट्स जो है उनकी फ़ोटोज़ काफ़ी ट्रेंड कर रही थी। लोग अपने लव्ड वंस को भेज रहे थे एंड उसको अलग अलग नाम दे रहे थे एंड मेरे पास भी काफ़ी आए थे। मैंने भी सिमरन और तनीषा को काफ़ी सारे भेजे थे। सो इन शॉर्ट काफ़ी क्यूट एनिमल जो है वो एलिफेंट होता है एंड इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं मुझे ऐसा लगता है जो इस क्यूट से एनिमल के बारे में आपको पता होने चाहिए। सो सुपर मेमोरी होती है एलिफेंट्स की। सो इनका दिमाग बहुत तेज होता है और अगर आपने एक बार इनसे दोस्ती कर ली तो फिर ये आपको लाइफ टाइम याद रखते हैं। एंड उसके बाद एक मैं बात बताऊँ, इमोशनल एनिमल्स होते हैं काफ़ी एंड ये इंसानों की तरह ही ना सारे इमोशंस फील कर पाते हैं, खुशी, दुख, रोना। एंड मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पर एलिफेंट्स जो है वो अगर जो उनका टेक केयर करने वाला इंसान है उसको बदल देते हैं तो वो काफ़ी बार रोने भी लग जाते हैं। एंड बहुत सारी अमेजिंग जो है इनके पास सुपर पावर्स होती हैं एंड ये ना सबसे बड़ा लैंड एनिमल जो है वो भी इन्हें कंसिडर किया जाता है। एंड बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं और बहुत सारा खाना जो है वो खा सकते हैं एंड बहुत ही क्यूट एनिमल है इन शॉर्ट।

0: जाइए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फिलहाल जो है जिन्हें सक्सेस मिल चुकी है बॉलीवुड में, सारा अली खान का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, उनका एक अमेजिंग वाला गाना जो है आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। एंड बाकी आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: जिसमें है बहुत सारा टैलेंट, जिसको मिलता है बहुत सारा प्यार, सारा का सारा बॉलीवुड करता है जो सारा के चर्चे,
2: वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
1: उस रॉयल बॉलीवुड प्रिंसेस सारा अली खान को रेडियो ऑल ऑफ विशेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

देखिए राता को तो नहीं पता, लेकिन आपकी दोपहरें जरूर मेरे साथ जो है वो गुजरती है। सो बस अब आपको चाचा बाय बाय करके यहाँ से जाने के लिए मैं आ गई हूँ। जी हाँ, जाने के लिए आई हूँ। आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे लाइफ मस्त है शो, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो एटलीस्ट मैं कोशिश तो करती हूँ, और आप लोगों को मजा भी आता है, आपके मैसेजेस से जो है मुझे समझ आया है। लेकिन अगर और ज्यादा फन जो है वो आपको चाहिए तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर अभी के अभी जाओ और फॉलो बटन दबा दो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट आ रहा है। एंड एक वीडियो जो है कल ही हमारे ऑफिस वालों ने जो है बनाई एंड वो पोस्ट करी है, इतना मजा आया ना मेरे को वो वीडियो देख के, मैं बार बार जाके देख रही हूँ। आप भी एक बार देखो, आपको भी बिल्कुल पसंद आएगी आएगी। सो जल्दी से जाओ फॉलो कर लो रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल को। बाकी नंबर तो आपको बताइए हमारा 3311063, इस पर अगर आप जब चाहे तब हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बातचीत जो है जारी रखेंगे। फिलहाल मैं चलती हूँ, जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, एंड मुझे ना याद करते रहना। फिलहाल ऑल द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आवर आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, इसके साथ आपको मैं छोड़े जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ जो है कहते रहिए जियो बिंदास तारा, बाय बाय, टेक केयर। Radio

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और बांध रखे तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, क्या चल रहा है, डिटेल में बताना। तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
2: 106.3
1: FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई बहुत ही बढ़िया एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फिनलैंड में जो है एक नए टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करने की बात की गई है। ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वायरलेस तरीके से हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी केबल्स। समथिंग वेरी सिमिलर जो है वो निकला टेस्ला भी ट्राई कर रहे थे, बट जब वो ट्राई कर रहे थे तो सब लोगों ने बोला कि भाई ये पागल है करके, ये सेफ नहीं है करके। मगर अभी फिनलैंड जो है ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जिसमें पावर को जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है वायरलेसली विदाउट एनी केबल्स। और अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा भाई। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Humne laga aur ho ja recharge.
3: Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
4: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक छोटा सा कहानी जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा. एक छोटा सा किस्सा है मेरे स्कूल टाइम का. तो जब मुझे मम्मी लंच भेजती थी ना, तो लंच जब भी मैं खोलता था, स्पेशली अगर साउथ इंडियन डिश होता था जैसे कि इडली डोसा ऐसा कुछ होता था, तो जैसे ही मैं डब्बा खोलता हूँ चार दिशा से 40 हाथ आते हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है. मुझे कुछ मिलता नहीं था. और दूसरी बात दुविधा ये थी कि मैं ना बैग से लंच बॉक्स उठा के वॉश बेसिन में डालना भूल जाता था हर बार. एक बार ऐसा हुआ कि 10 दिन का वेकेशन था, ऑटम ब्रेक था, ऑटम ब्रेक के पूरे 10 दिन मेरे बैग में मेरा लंच बॉक्स पड़ा रहा. और स्कूल जा रही एक दिन पहले जब खोल के देखा तो भाई बहुत बहुत ही गलत बवाल मच गया था घर पे. उसके बाद से मैंने शपथ लिया, संकल्प लिया कि मैं स्कूल में लंच लेके नहीं जाऊंगा. और मैं लंच लेके नहीं जाता था. और मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स जो है लंच लेकर आते थे और जब भी वो थोड़ा बहुत ऐसे शेयर करते थे तो मैं सोचता था कि यार ये खाना गरम गरम अगर हम खा पाते, ऐसा सेटअप होता स्कूल में. क्योंकि स्कूल में तो क्या कैंटीन होता है जिसमें हमें पेटीज मिलते हैं या फिर चाउमिन मिलता है, बट घर का खाना, घरेलू खाना अगर हमें गर्मा गर्म मिल पाता. तो ऐसा एक इनोवेशन आया है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा थोड़ी देर में. अभी यहाँ पे फिलहाल गाने प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: जिसमें है बहुत सारा टैलेंट, जिसको मिलता है बहुत सारा प्यार, सारा का सारा बॉलीवुड करता है जिस सारा के चर्चे,
2: वही तो मेरी स्वीट हार्ट है.
1: उस रॉयल बॉलीवुड प्रिंसेस सारा अली खान को रेडियो ऑल ऑफ विशेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक फॉर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया खबर जो है हम बताना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले लंच बॉक्स के बारे में, दुविधा थी मेरी कि मैं लंच बॉक्स ले जाना मतलब पसंद नहीं करता था स्कूल में ड्यू टू सम रीजन जो मैंने शेयर किए थे। और मैंने एक ये भी बताया था कि भाई मैं कभी कभी सोचता था कि काश गर्मा गर्म खाना मिल पाता करके। और वैसे बचपन के मेरे इस रिक्वेस्ट को थर्मल इंडिया करके एक स्टार्टअप ने जो है बहुत सालों बाद सुनी लिया एंड दे हैव कम अप विद थर्मल जो है उनका एक लंच बॉक्स है जो 80 डिग्री सेल्सियस तक आपके खाने को गर्म कर सकता है। यानी कि आप उस लंच बॉक्स में खाना रख के स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, वर्क के लिए जा सकते हैं। उसके बाद जब खाने का टाइम आएगा तो आप उसे गर्म कर सकते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस तक वो खाना गर्म कर सकता है। और एक बहुत ही बढ़िया 7500 mAh का बैटरी बैकअप है। यानी कि एक ही चार्जिंग साइकिल में 4-5 हीटिंग साइकिल्स तो वो निकाल ही लेता है। तो काफी कूल एक इनोवेशन मुझे लगा ये। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।
1: ये गाना
2: करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM पर Jio Bindas. Olive
1: Recharge. This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंसाइटफुल बात जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा. ठीक है, तो कल बैठ के ऐसे ही मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, चीजों के बारे में सोच रहा था, बहुत सारे चीजों के बारे में ऐसे सोच सोच के ऐसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था. तो मुझे ना एक किस्सा याद आया जब मैं स्टेज में गया था. स्कूल के टाइम की बात है, स्टेज में गया था मैं एक स्टोरी बोलने के लिए. और उस टाइम पे ना वो पोडियम नहीं था, वहां पे पोडियम हटा दिया था, तो सिर्फ मैं और माइक स्टैंड था. और मैं बहुत नर्वस हो गया भाई, मेरे पैर कांपने लग गए. पूरा स्कूल देख रहा है मुझे, पूरा स्कूल मुझे देख रहा है, मेरे पैर ऐसे डग डग डग करके कांपने लगे. मगर मेरे डिलीवरी में बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि मैं मतलब बहुत नर्वस हूं करके या फिर मुझे डर लग रहा है करके, मगर मेरे पैरों ने जो है पोल खोल दिया था भाई. वो कहते हैं ना कि आंखें जो है देख के पता चल जाता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है. मेरे आंखें देख के बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, मगर मेरे पैरों को देख के भाई साहब समझ गए थे कि भाई इसके साथ तो कुछ तो सीन हुआ है करके. ठीक है, वो काफी एम्बैरसिंग मेमोरी था मेरे लिए. मगर अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं मुस्कुराते हुए उसके बारे में सोचता हूँ. मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अरे यार क्यों मेरे पैर कपे. बट मोस्टली ऐसा होता है हमारे साथ ही, बहुत सारे एम्बैरसिंग मोमेंट्स जो है बाद में हमें हंसाते हैं, मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देते हैं. और उससे मैंने यही सीख जो है ली है कि लाइफ में ऐसे एम्बैरसिंग मोमेंट्स आने चाहिए, तब जाके ही हम थोड़े मजबूत बनते हैं. और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और मेरे साथ मेरे दोस्त ने एक बहुत बड़ा मजाक किया यार। मजाक नहीं बोलूंगा मैं यही बोलूंगा कि उसने जो है बहुत गलत किया मेरे साथ। बात यह है कि मैं बात कर रहा था उससे और वो पूछ रहा था क्या हाल है, कैसा है। तो मैं बता रहा था कि गर्मी है बहुत, ये सब है वो सब है। तो उसने बताया क्या किया, उसने मुझे एक वीडियो भेजा। उसके घर के पास बारिश हो रही थी और वो वीडियो दिखा के कह रहा है कि तू मिस कर रहा होगा ना ये। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि देखिए ऐसे नहीं करना चाहिए, आप भी किसी के साथ ऐसा मत कीजिएगा, बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। हम सब जो है बारिश को बहुत मिस करते हैं और बारिश जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी था ना, जब हम घर में थे बचपन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। और मेरे मन में जो है कुछ अल्फाज ऐसे आ रहे हैं, किशोर दा ने जो है गाया था इस गाने को,

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ऑल इन लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑल इन रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 FM पर। जियो बिंदास।
3: ऑल इन रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

यार कई बार हमने मोटिवेशनल स्पीकर्स के इसमें सुना होगा कि छलांग लगाइए, कभी भी अपने लाइफ में एक छोटा गोल मत रखिए, एक बड़ा ऊंचा गोल रखिए और उसकी ओर आप छलांग लगाइए करके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अर्थ में ग्रेविटी नाम की एक चीज होती है, तो जितना भी हम छलांग लगाए नीचे ही आते हैं, विच इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थॉट। वो यही कहना चाहता है कि तुम बहुत ऊपर तक जाओ मगर हमेशा ग्राउंडेड रहना भी याद रखना करके। वैसे छलांग लगाने के बारे में हमने बात की है तो काफी बढ़िया एक इनोवेशन जो है जंपिंग से रिलेटेड आया हुआ है। जापान के एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक बहुत ही कूल एक डिवाइस बनाया है जो हमारे जंप को बहुत इंप्रूव कर सकता है। सो बेसिकली वो एक हॉवरिंग डिवाइस है, उसको हम एक बेल्ट की तरह अपने कंधों के यहाँ पे ऐसे बांध सकते हैं और हम कूदना चाहें तो नॉर्मल ह्यूमन कैपेबिलिटी है जो होती है ना जंप की, उससे कई ज्यादा ऊंचा हम कूद सकते हैं। और मुझे लगता है कि यार ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो फिर ओलंपिक्स में हाई जंप और ये सारे जंप के जो स्पोर्ट्स होंगे वो क्या करेंगे फिर। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, देखिए हम ये सब जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हम एआई के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब है वो सब है। और बहुत लोग कहते हैं कि एआई बहुत बुरा है, यूज नहीं करना चाहिए, ये सब वो सब, ये सारे डिबेट्स चलते रहेंगे। मेरा यही मानना है कि एआई ही नहीं, हर एक नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है दो पहलू के साथ आता है, अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। कैसे यूज करना है वो ऐसा सोसाइटी एक कलेक्टिव कॉन्शियंस के साथ हमें डिसाइड करना होता है। मगर कुछ खूबसूरत चीजें हैं जो ऐसे टूल्स पॉसिबल कर बनाते हैं। रिसेंटली मैंने अपने एक फ्रेंड के मम्मी के इंस्टाग्राम पे एक फोटो को देखा, ठीक है, जहां पे आंटी ने एक फोटो डाली थी अपने पापा के साथ। अब बात यह है कि अंकल गुजर गए बहुत साल पहले, तो जब आंटी से बात हुई थी मेरी तो आंटी मुझे बताती थी कि जब मैं 20-25 साल की थी तब मेरे पापा गुजर गए थे, बहुत यंग थी वो। और अभी के उनके एक फोटो के साथ उन्होंने अपने एक पापा का फोटो जो है थ्रू AI यूजिंग AI जनरेट करके अपलोड किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसे बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स रिलिव करने के लिए या फिर हमें फील कराने के लिए इन टेक्नोलॉजीज का जब यूज किया जाता है तब जाके एक मीनिंग मिलता है उन्हें। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम। मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो ऑलिव बोलो बिंदा।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और मैंने ना एक चीज नोटिस की है, ठीक है, कि जैसे जैसे जनरेशन आते हैं, हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हैबिट्स में ही नहीं, मुझे लगता है कि जो तौर तरीके होते हैं, रवैये होते हैं, उन सब में बहुत चेंजेस आते हैं। पहले जो चीजें होती थी वो आजकल उतनी नहीं होती। जैसे कि पहले लेटर लिखना होता था, ठीक है, आजकल उतना नहीं होता। पहले प्रॉपरली ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्जेशन होते थे, आजकल उतने नहीं होते। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, नौकरियां बहुत सारी बदल गई, सोचने का जो तरीका है वो बदल गया है, चीजें बदलती जा रही हैं, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें एक्सटेंट हो रही हैं, कुछ चीजें इवॉल्व हो रही हैं, कुछ चीजें कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो हर एक दौर के साथ नए हैबिट्स आते हैं, नए तौर तरीके आते हैं और पुराने चले जाते हैं। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, अगर इस एक टाइम में से एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये आने वाले 50 साल में शायद नहीं रहेगी, बदल जाएगी, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज होगी? जैसे कि लेटर राइटिंग बदल चुका है, आजकल जो है लोग व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, ठीक है, तो लेटर राइटिंग कोई नहीं करता आजकल, वो बहुत ऑब्सोलीट सा हो चुका है। सिमिलरली आजकल के जमाने ऐसी कौन सी चीज होगी जो ऑब्सोलीट हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी? सोचिए जरा, बताइए, थोड़े क्रिएटिव हो जाइए। और एक बात बोलते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Cool Song रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना Cool Song ऑफ द ईयर।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुबेव। तो भाई एक चीज याद दिलाने के लिए आया हूं कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानी क्या किया ये है? सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे, सर्च कीजिए radioolive.qa और फॉलो बटन अगर दिख रहा है, फॉलो लिखा हुआ, तो फॉलो कीजिए, एक ही बार दबाना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप हमारे कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट भी जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज में आपको धीरे धीरे मिलेंगे, आने वाले दिनों में और भी आएंगे। तो आप ऑन एयर में भी जीत सकते हैं, ऑनलाइन भी जीत सकते हैं। तो देखिए जीतने के मौके बहुत सारे, बस आपको चूज करना है। और ये बात बोलते हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: जिसमें है बहुत सारा टैलेंट, जिसको मिलता है बहुत सारा प्यार, सारा का सारा बॉलीवुड करता है जो सारा के चर्चे,
2: वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
1: उस रॉयल बॉलीवुड प्रिंसेस सारा अली खान को रेडियो ऑलिव विशेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
2: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
1: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, 3 घंटे खत्म हो गए, बहुत जल्दी वक्त निकला, मगर कोई गल नहीं जी, कल मिलेंगे फिर इसी सीट पर आके आपके साथ बैठकर बात करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे एंड वक्त बिताएंगे। तो जाते जाते जाते एक ही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। तो फिर मिलते हैं चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिल।

0: सामने, मैं आ गई आपके कानों तक पहुंच गई। किसी ने परेशान तो नहीं किया आपको अपने गुड इवनिंग वाले मैसेजेस बताने के लिए और ये बताने के लिए कि आपका आज का दिन कैसा रहा? मुझे 3311063 पे मैसेज कर दो और आने वाले गाने वीकेंड के लिए जो कि कल आने वाला है, फील आपको आज ही मिलेगी।
1: घंटी बिग बैन थी, पूरा लंदन ठुमकदा,
0: चार घंटे ठुमकेंगे यार सिमरन कौर आपके साथ है। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जी ओ बिंदास,
2: जिसमें है बहुत सारा टैलेंट, जिसको मिलता है बहुत सारा प्यार, सारा का सारा बॉलीवुड करता है जो सारा के चर्चे,
1: वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
2: उस रॉयल बॉलीवुड प्रिंसेस सारा अली खान को रेडियो ऑलिव विशेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: हाय गाइस, दिस इज वाणी भानुशाली।
2: हे, दिस इज लियाना डिक्रूज।
3: दिस इज मी ऋतिक रोशन।
4: हाय, आई एम आलिया भट्ट।
5: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर 1 आरजे
7: सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

दादाजी कुमार सानू की आवाज, ब्यूटीफुल ट्रैक। हां जी सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल। सिमरन कर रहे थोड़े नाल 5:20 55 सेकंड स्टूडियो।

0: पर जो है गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं और ये एक नंबर शो एक टाइम पे मेरे लिए हुआ करता था। आज भी मुझे इस शो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं बोलती रहती थी कि ये क्या चल रहा है यार, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट पूरा था। क्राइम पेट्रोल अगर आप में से किसी ने देखा, जिसमें अनूप सोनी, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अगर हमने नहीं देखा आपको ये तो जरूर ही पता होगा। एक टाइम था जब मैं बहरीन में थी, मैं बैक टू बैक इसके बहुत सारे एपिसोड देखे, मतलब मेरे को, मैं क्योंकि इसके ना एपिसोड ऐसा दिखाते थे कि भाई लास्ट में कौन खूनी निकलेगा, किसने ये क्राइम किया, ये है वो है, सो बड़ा सोचती होती थी यार इन सारी चीजों के ऊपर, और बड़ा इंटरेस्ट रहता था, मैं पूरा पूरा दिन निकाल देती थी। इनफैक्ट आज मैं तनीषा के साथ भी डिस्कस कर रही, तनीषा बोली कि मैंने भी बहुत देखा है क्राइम पेट्रोल, और मैं और मेरे जीजू बड़े फैन है यार क्राइम पेट्रोल के। तो मैं अचानक से क्राइम पेट्रोल के बारे में क्यों बात कर रही, एक न्यूज जो है वो ये आ रही है कि अब जो 11 साल का एसोसिएशन था अनूप सोनी का, ये अपना क्या कहते हैं क्राइम पेट्रोल के साथ, वो अब एंड हो चुका है। अब क्राइम पेट्रोल में अनूप सोनी की जगह अजय देवगन दिखने वाले हैं। एग्जैक्टली और 15 एपिसोड अब उन्होंने ऑलरेडी शूट कर लिए हैं और ये इसका पहले एपिसोड जो है वो 31 अगस्त को आने वाला है। सो कांट वेट यार, मैं सोच रही हूँ अजय देवगन किस तरह से करेंगे इस क्राइम पेट्रोल को, क्योंकि हमको आदत अनूप सोनी की यार। सिमरन गौरयाव के साथ ट्रियो बिंदास। आप में से किस किस ने क्राइम पेट्रोल देखा है बताओ मुझे, 3311063। हाई फाइव।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: ट्रैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आप मेरे बगैर इतने शैड शैड गाने गाने लगे। मैं थोड़ी देर पहले बहरीन की बात कर रही थी ना कि मैंने बहरीन में क्राइम पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा देखा है। सो मुझे सईजी का मैसेज

0: महीने में भी रूम में बैठ के और रूम एकदम एजी में ठंडा करके और मैं क्रिसमस की मूवीज देख के एंजॉय कर लेती हूँ। लेकिन यस, ये वाइब ही अलग है। बस अगस्त जैसे ही खत्म होगा ना, और भी फील आने लगेगी और फील मुझे और भी ज्यादा मिलती है और किक मिलती है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं।
1: सिमरन दी,
0: हेलो,
1: आई एम लव या, व्हेन व्हेन व्हेन यू विल कम आवर होम, आई लव यू,
0: लव यू टू बेबी, लव यू टू। अच्छा ठीक है, वो मेरे को इनवाइट कर रही है अपने घर पे। जब आपके मम्मी पापा मुझे आपका एड्रेस बताएंगे ना, तो मैं आपके घर पे जरूर आ जाऊंगी। आपसे तो जरूर मिलना यार, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है यार जब ये छोटा बेबी मेरे को मैसेज भेजता। आपने तो कभी अपना नाम भी नहीं बताया।

0: Olive. 106.3 FM. Jio
1: Bindas. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

जी मैं किसी सोनियों की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ और आप लोगों की आशिकी जो हमारे साथ चलती रहती है आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो बहुत ही मतलब क्यूट होते हैं यार थैंक यू सो मच। मुझे मैसेज आया है जिशान जी का। जिशान जी ने बोला कि हम भी आपको बहरीन में जो थे वो सुनते थे एंड उनकी वाइफ उनके साथ गाड़ी में बैठी हैं और कह रहे हैं कि अमल जो है वो बेस्ट जो है वो वाइफ एंड पार्टनर है। ओहो पूरी दुनिया में मतलब पूरे प्लैनेट में मतलब क्या बात है यार अमल मतलब चेहरे पे स्माइल अब आ गई होगी ब्लश कर रहे होंगे तो रेडियो को सुनते हुए ना एक काम किया करो फिर आप वीडियो बना के रेडियो ऑलिव को टैग कर दिया करो यार और अच्छा लगता है कि आप लोग सुन रहे हो तो वहां का फिर माहौल

घर से बाहर जाते हैं है ना, सो आप छुट्टियों पे जा रहे हैं, उसके बाद आपके घर का माहौल कैसा है वो आपको पहले चेक करके जो है वो जाना पड़ेगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऑलरेडी बोला है कि आपको कुछ चीजें जो है वो ध्यान रखनी है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, कनेक्शन है, उसको आप जो है अनप्लग करके जाइए, एंड गैस वाला सिस्टम है उसको भी आप सेट करके जाइए, टर्न ऑफ करिए है ना। उसके साथ साथ वाटर सप्लाई वाला जो है, अगर कहीं पर पानी टपकता नहीं रह जाना चाहिए, प्रॉपर चेक कर लीजिए कि कहीं से कोई यू नो टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। जितने भी आपके सिक्योरिटी कैमराज हैं उसको एक्टिवेट कर दीजिए, सारे एंट्री पॉइंट्स जो है डोर या विंडो उसको अच्छे से लॉक कर दीजिए, कोई भी चीज़ प्लग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सेफ्टी आपकी, ये आपका घर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमरन गौरी आपके साथ, ठीक हो, बिंदास।

है यार ये हाईवे फिल्म से। अगर आप हाईवे पे थे और ये गाना चल रहा था, ओहो यो वेलकम है जी। और अब मर्जी तो मौसम की है। मौसम सर्च करके बताती हूँ कि आज पूरा दिन में कितनी ह्यूमिडिटी जो है वो रहने वाली है। कितना दिखा रहा है यार, पीक आवर्स जो है वो 70% के रहने वाले हैं। टुडे टिल लेट टुडे कर लेती हूँ, रुक जाओ ना यार, आपके लिए सर्च करके बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट में तो हूँ नहीं हूँ, ठीक है। और आज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब रात को 11 बजे 61% समथिंग हो जाएगी, 9-10 बजे 56-59% जो है वो होने वाली है। सो या ये है मौसम के हाल, सुंदर ये रेडियो ऑलिव करके दे रही है जी ओ बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲੋ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर 1 आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ
1: ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੀਵਾਨੇ ਇਸ ਦਿਲ ਮੇਂ, ਹਲਚਲ ਹਲਚਲ
0: ਔਰ ਹਲਚਲ ਹਲਚਲ, ਗਰਮੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ।
2: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਵਾਟ ਅ ਵਾਇਰਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ।
0: देखो गर्मी अपने कतर में वायरल है, राइट, लेकिन फिर भी हम सब अपने अपने घरों से दूर रहते हैं, ज्यादातर अपना खाना जो है बाहर से हम मंगाते हैं, चीजें जो है बाहर से मंगाते हैं, मतलब चुटकियों में हम लोग ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं ना। यहाँ पर आज मैं बस एक चीज बोलनी चाहूंगी कि गर्मी हर जगह पे पड़ रही है, जो हमारे लिए यू नो ऑर्डर लेके आ रहे हैं जो डिलीवरी वाले भैया है ना, अलग अलग एप्लीकेशन है, सो हमारे पास मिनट्स में जो है वो चीजें पहुंच जाती है। सो गर्मी सभी के लिए है और कदर की जो है ये बहुत ही बढ़िया बात है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो डिलीवरी है वो टिल सितंबर 15 जो है वो 10 से लेके 3:30 या 4 बजे के बीच तक जो है वो गाड़ियों में होती है, लेकिन फिर भी यार गर्मी बहुत सारी है। कोई भी अगर आपको डिलीवरी देने आ रहा है, चाहे वो रात में है, क्योंकि गर्मी तो रात बीच भी रहती है, राइट, सो मेक श्योर कि आप सबको जो है ना पानी का बॉटल जरूर दीजिए। पानी का बॉटल नहीं देना है, ग्लास में पानी दे दीजिए, पानी पूछ लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। मतलब कितने कितने घंटे मुझे लगता है ये डिलीवरी वाले भैया जो है वो डिलीवरी देते रहते होंगे, तो कभी कभी काम के चक्कर में आपका ध्यान भी नहीं रहता और हर बार आप खरीद भी नहीं सकती हो यार पानी की बॉटल्स अपने लिए। सो ऐसे टाइम पे कोई भी अगर आपके घर पे, इनफैक्ट कोई हेल्पर भी आ रहा, सफाई करने वाले भी आ रहे हैं ना, तो सबसे एटलीस्ट पानी जो है वो ज़रूर पूछो, सही है यार।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

बोलो बेबी। सेकंड स्टूडियो की ओर ही भेजोगे सिमरन कौर आपके साथ है। गिद्धा जी ठीक हो?

0: अब समझ लगती है कि प्यार करने के लिए इतना जिगर क्यों चाहिए रहता है, इतना क्यों चाहिए रहता है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है, क्योंकि बाद में जो प्यार की चोटें लगती है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं सह सकता यार। समझ रहे हो, दिल विल भी टूटना होता है, चीखना चिल्लाना भी होता है, टॉक्सिसिटी भी बर्दाश्त करनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है।
1: जो भी सचता तेरा कहना तू ही मेरी है।
0: प्यार के नीचे एक लाइन आनी चाहिए, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, कमजोर दिल वाले ना करें। और फिलहाल एक चीज आप करें जो मैं आपको बताने वाली हूँ।
2: जेंजी डिकोडेड,
3: ऐसे है क्या?
2: दा, दा, दा, दा।
0: कभी कभी हमारे माइंड में ये होता है कि हम कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लेकिन आप मेंटली इतने ज्यादा वीक फील कर रहे हो और लेकिन आप क्लियर डिसीजन जो है बना नहीं पा रहे हो, राइट? तो उसको जेंजी लिंगो में बोलते हैं विशी वॉशी। जी हाँ, नेक्स्ट टाइम आपके सामने को विशी वॉशी फीलिंग विशी वॉशी, तो आपको समझ आना चाहिए कि मतलब वो क्लियर डिसीजन जो है वो नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, सुनते रहो रेडियो ऑलिव, गैदर उत्सव विंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

प्रतियोगिता दी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाडे नाल। देखो यार, खाने पीने का ध्यान जो है वो सिर्फ गर्मियों में नहीं, नॉर्मली भी हमको थोड़ा सा रहना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने वॉर्न किया कि क्या होता है कि कभी कभी आपको फोन पे जो है वो बता देते हैं, मैसेज करके बता देते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपको सस्ते मिल जाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। सो जिस जो फोन पे मार्केट करके आपको प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, प्लीज ऐसी चीजों को मत खरीदिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर वैलिड है तो आपको ग्रोसरी स्टोर्स में या फिर इधर उधर हर जगह पे मिल जाएगी। ऐसे फोन पे अगर कोई आपको कॉल करके बता रहा है कि हाँ भाई ये चीज है आपको मिल जाएगी, सो ये चीजों को अवॉइड करो, थोड़ा सा सियाने बढ़ो।

नहीं, मैंने प्यार किया फिल्म के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। सलमान खान नए थे, ठीक है, और उनको ना सेट पे या फिर इंडस्ट्री में उतनी ज्यादा इज्जत जो थी वो नहीं दी जाती थी। जो असिस्टेंट थे वो क्या होता था, जैसे शॉट खत्म होता था उनके लिए चेयर भी नहीं खींचते थे, वो अपने आप चेयर खींच के बैठते थे, मतलब इज्जत नहीं मिलती थी। तो मनीष महल जो उनके साथ थे फिल्म में, वो बोलते थे कि देखना ऐसा दिन भी आएगा जब ये खुद मेरे लिए आएंगे और चेयर खींचेंगे। और भाग्यश्री की बात बताऊं, भाग्यश्री बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी एक्टिंग की थी उन्होंने, आज भी वो उतनी प्यारी लगती है। लेकिन भाग्यश्री के फैमिली वाले इतने ज्यादा वो थे, स्ट्रिक्ट थे, कि भाई कहते हैं कि फिल्म में ऐसा कुछ पुछ वाला कोई भी सीन जो है वो नहीं होना चाहिए। और पहली बार ये था कि उससे पहले उसके पेरेंट्स जो हैं उसको जीन्स वगैरह पहनने के लिए अलाउड भी नहीं करते थे, चूड़ीदार सूट ही पहना करती थी। ये पहली बार था जब भाग्यश्री ने वन पीस पहना और जीन्स पहनी थी उनकी लाइफ में। एंड उसके साथ साथ ये जो फिल्म थी उसमें सलमान खान, मनीष महल, रीमा लागू, लक्ष्मी कांत, है ना, इन सबके करियर जो थे वो बना दिए थे। एंड सूरज बड़जातिया ने इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा 10 महीने मेहनत की थी, 6 महीने इस फिल्म को उन्होंने लिखा था, 4 महीने उन्होंने सेकंड हाफ लिखा था। सो या कुल मिला के ये फिल्म के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हुई थी। होर भी बहुत सारी गल्ला ने इस फिल्म के बारे जिड़िया, तो मैं वापस लौट के दस्तांगी।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेत। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: on, जी ओ कम ऑन करियर बना दिए थे इस फिल्म ने। एंड उससे पहले जो थे आमिर खान एंड सलमान खान, लोग समझते थे कि ये दोनों भाई हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में सलमान खान ने क्लियर किया था। सो और इस फिल्म के गानों की बात करें तो लता मंगेशकर ने एक दिन में, जी हाँ लता जी ने एक दिन में ये सारे गाने जो थे इस फिल्म के रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि उनका कॉन्सर्ट था, उनको जाना था अब्रॉड में, ठीक है। एंड इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान भाग्यश्री ने अपने समवन स्पेशल के साथ कर ली थी शादी और उसके पेरेंट्स के खिलाफ जाके शादी की थी। उस शादी में सलमान खान एंड सूरज सर जो थे वो थे। और अगर बात करें इस फिल्म के कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स की, चाहे वो स्पेशली वो बेस्ट फ्रेंड वाली कैब जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड वो सेल पर चली गई थी यार चीज़ें। सो इसके साथ साथ मनीष महल की एक्टिंग करियर को, जो पहले इतना बढ़िया नहीं कर रहा था, सो मनीष महल को लगा था कि भाई मेरा एक्टिंग में कुछ हो नहीं सकता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक्टिंग छोड़ देता हूँ। और उन्होंने क्या कहते हैं फ्लाई करना सीख लिया। सो उनके पास फ्लाइंग लाइसेंस भी था, बट सलमान खान ने समहाउ जो था मनीष महल का नाम जो था वो रिकमेंड किया और इस फिल्म में वो आ गए और उसके बाद उनकी करियर जो था वो चल गया। एंड मनीष महल ने का करियर जो था वो ऐसा भी चला कि वो विलेन के रोल में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने लग गए थे। बट ये फिल्म अच्छी काम की, बढ़िया चला, बट इस फिल्म के यू नो रिलीज होने के बाद, हिट होने के बाद सलमान खान को 6 साल काम नहीं मिला था यार। सो या ऐसा भी होता है लाइफ में। मैंने 6 साल बोला, नहीं सॉरी यार, 6 महीने काम नहीं मिला था इस फिल्म के। यार मैं सोचू मैंने 6 साल बोल दिया क्या? हो जाती है जुबान, जुबून फिसल जाती है यार। सुनते रहो रेडियो अलीपुर, कहते रहो जियो बिंदास। वापस लौट के मैं नेम गेम भी खेलूंगी और रियलिटी चेक भी होगा।
1: अब सुनिए

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: समझ चुका ये गाना। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਦਾਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: बिल्कुल जरूरी है। और रियलिटी चेक में मैं आज बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज जो कि आप जैसे मैं बताऊंगी आप लोगों को फील होगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जिसका आप बहुत ज्यादा करते हो लेकिन ना मतलब आप उस पर आंख मूंद के जो है वो भरोसा करते हो, है ना, जो वो बात बोले आप वो बात सुन लेते हो, लेकिन आपको कभी एहसास होता है कि जिस इंसान पर आप इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो ना वो इंसान आप पे नहीं उतना ट्रस्ट करता। अगर नहीं है इस चीज का आपको पता तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि जितना ट्रस्ट आप करते हैं वो सामने वाला शायद आप पे उतना नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? आपका दिल साफ है, आप ट्रस्ट कर लेते हो, लेकिन अगर सामने वाला नहीं कर रहा और आपके साथ उसका कनेक्शन बड़ा अच्छा है तो फिर पीछे मुड़ना जो है इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या करें, एकदम से आप कभी भी पीछे जो है वो नहीं हट सकते, लेकिन जो ट्रस्ट और एक प्यार है आपका बना हुआ है वही चीज जो है वो आपको पीछे नहीं हटने देती है। लेकिन एक चीज उन लोगों से भी है कि जो लोग आप लोगों को पता है कि आप पे वो सामने वाला बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, सो आप भी उसका ट्रस्ट कभी ब्रेक मत करिए, कभी उसको ऐसा एहसास मत दिलाइए कि उनको तो आप पे ट्रस्ट है लेकिन आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। यार ये बहुत बड़ा चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है यार। वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ, उसके लिए तैयार हो जाओ, ट्रस्ट मी वापस आ रही हूँ।
2: जिसमें है बहुत सारा टैलेंट, जिसको मिलता है बहुत सारा प्यार, सारा का सारा बॉलीवुड करता है जो सारा के चर्चे,
3: वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
2: उस रॉयल बॉलीवुड प्रिंसेस सारा अली खान को रेडियो ऑल ऑफ विशेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हाँ जी, 7:51 स्टूडियो की घड़ी पे। ठीक हो? और अब टाइम है कि आप लोगों के नाम लिए जाएं। देखो दोस्त, अगला गाना शुरू होने में जो है वो कितने मिनट बाकी हैं? 2 ही मिनट बाकी हैं, 2 से कम मिनट बाकी हैं। सो अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मेरी व्हाट्सएप स्क्रीन पे दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दो क्विकली। वाजिद शेख जी, जुनैद जी, थैंक यू सो मच। दोष विक्रम जी, थैंक यू सो मच। आसमान जी, थैंक यू सो मच। मुकेश जी, थैंक यू सो मच। जिशान जी, थैंक यू सो मच। सैयद जी, थैंक यू सो मच। माही राजपूत जी, थैंक यू सो मच। खेमराज जी, थैंक यू सो मच। फहद जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहिस जी, थैंक यू सो मच। अलाउद्दीन जी, थैंक यू सो मच। रामा जी, थैंक यू सो मच। स्मिता संजू जी, आलिम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। राजा उस्मान अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अगला गाना फटाफट से, अगला गाना आने वाला है। अपना नाम लिख के भेजो 3311063। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिखना। नागेंद्र जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आसमा जी, थैंक यू सो मच। अनविश जी, थैंक यू सो मच। रिजॉल जी, थैंक यू सो मच। शबी जी, थैंक यू सो मच। सैफ जी, थैंक यू सो मच। बेलू जी, थैंक यू सो मच। मायशा हारून जी, थैंक यू सो मच। रामी जी, थैंक यू सो मच। फवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है क्विकली। हामद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कोको, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रियान जी, थैंक यू सो मच। आलिया जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, थैंक यू सो मच। अयाज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। भगवान गिरी जी, थैंक यू सो मच। उजा उजमा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। गोपी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कार्तिक जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हेली, थैंक यू सो मच। हारिस जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। पाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिया अब बेटा, आप थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो। अगले घंटे हम खेलने वाले हैं एक चुटकी सॉन्ग।

नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लठ, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

0: होके भी फिर आप तन्हा फील करते हो ना, तो होए बहुत ही अलग बात है यार लेवल की। लेकिन अलग लेवल की बात तो अब होगी
1: रेडियो ओलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: एक चुटकी सॉन्ग में अब बारी आ चुकी है कि मैं आपको एक चुटकी सॉन्ग सुनाऊंगी। रिकॉर्डर चाहिए तो फोन का ऑन कर लो ताकि आप 3-4 बार सुन लो, क्योंकि उतनी बार तो मैं नहीं सुनाने वाली, 2 बार सुना दूंगी। लेकिन बताओ ये कौन सा गाना है। काफी है, बताओ ये कौन सा गाना है। प्लीज लिखना नहीं है, वॉइस नोट भेजना है, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट वॉइस नोट वाला ही है। सो ध्यान से सुनो, 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप बोलो हे सिमरन, अपना नाम बताओ, गाना गाना है, गालो, बोलना है बोल लो, भेज दो 3311063 पर। एक बार फिर से चलो जी, इंतजार कर रही हूँ। फिर
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: खेल खेल में आप ये गाना सुन रहे हैं। खेल खेल में से आप ये गाना सुन रहे थे और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत।
0: और ये चुटकी सॉन्ग सुनाया था आपको। और ये गाना कौन सा है?
3: हेलो, हाय सिमरन, कैसे हो आप?
0: बहुत बढ़िया दोस्त।
3: हाँ जी, ये वाला सॉन्ग है। आ जा मैं हवाओं में बैठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है।
0: क्या बात है यार।
3: हेलो,
0: वो एक नंबर यार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। एक बार मैं वापस से आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि जब भी आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करते हैं तो एक बार सुन भी लिया करें। कभी कभी आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आती है, तो वो चीज जरूर देख लिया करें आप। और अगर किसी की जोर जोर से याद आ रही है

0: बताई तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
1: जिसमें है बहुत सारा टैलेंट, जिसको मिलता है बहुत सारा प्यार, सारा का सारा बॉलीवुड करता है जो सारा के चर्चे,
2: वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
1: उस रॉयल बॉलीवुड प्रिंसेस सारा अली खान को रेडियो ऑलिव विशेस अ वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मुलाकात ओवर थिंकिंग मत करिएगा खाते पीते रहो ऐश करते रहो चेहरे वड्डे वाली स्माइल लगो किसी का दिल बंद दुखाना बी नाइस टू एवरीवन यार गुड नाइट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो
1: रेडियो

Good evening, welcome back. You are listening Radio Ale 106.3 FM. This is me Muskan with your show ka naam hai Midnight Lounge. I know, pura din kaam karne ke baad aapke man mein bas yahi thought hoga ki kal ka din aaye aur weekend shuru ho jaye. Ek ajeeb si feeling hoti hai Wednesday ki. Hame lagta hai ki Sunday ko sochte hain ki chalo week start ho gaya. Tuesday tak pahunchte somehow lagta hai ki nikal gaya, lekin Wednesday aisa lagta hai jaise week in personally humse na dushmani le raha hai. Subah office jaate waqt लगता है कि अभी तो यार थर्सडे इवनिंग में बहुत टाइम है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही वीकेंड नजर आने लगता है हम मेंटली उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं. सो कल थर्सडे है, लेकिन आज हम बात करेंगे आज ही के दिन की, वीकेंड के मूवी प्लान्स की, मतलब और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आई हूँ. दिमाग जो है वो ऑलरेडी वीकेंड में पहुँच चुका है मेरा, तो आज एक छोटा सा रिमाइंडर लेकर आई हूँ. पूरा वीक जो है फ्राइडे का वेट करते हुए मत निकालिए. वेंसडे भी आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और बताइए कि वेंसडे यानी कि आज का दिन आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा था, कौन सा ऐसा काम था जो आपको लग रहा था यार ये तो मुझे इस हफ्ते ख़त्म करना ही है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है सेम 3311 1063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

एक एपिसोड खत्म होता है, स्क्रीन पर आता है नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट्स इन 5 सेकंड, और हम कहते हैं बस एक और, फिर वो एक और, फिर एक और, और सडनली घड़ी जो है वो बोलती है कि इट्स ऑलरेडी 2 AM। लेकिन कभी सोचा है हम रुक क्यों नहीं पाते? क्योंकि कहानी जब कंप्लीट नहीं होती हमारा दिमाग उसे ढूंढना नहीं चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता। मतलब उसे लगता है कि सस्पेंस, क्यूरोसिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट सीन देखने के लिए हमें खींचती हैं। और ऑनेस्टली कभी कभी सीरीज से ज़्यादा एडिक्टिव जो है वो मतलब आप आगे क्या होगा ये सोच रहे होते हो। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। हम जो अनसर्टेनिटी है उससे परेशान होते हैं, लेकिन वही अनसर्टेनिटी हमें आगे भी लेकर जाती है। सो आज रात अगर नेटफ्लिक्स पूछे आर यू स्टिल वॉचिंग, पहले खुद से पूछ लेना क्या मुझे सच में नेक्स्ट एपिसोड देखना है या मैं बस एंडिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। सो आई विल से कि देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, जो जैसे हम डूम स्क्रोलिंग करते जाते हैं, मतलब मैं तो बहुत करती हूँ यार, एक बार इंस्टाग्राम चालू हो गया समझ लीजिए एक आध घंटा तो गया। और इसी के साथ नेटफ्लिक्स का भी सेम ही हाल है, कितनी सारी नई नई वेब सीरीज आ रही हैं और मैं एक के बाद एक एपिसोड्स देखती जाती हूँ। वो तो भला हो इन लोगों का जिन्होंने पहले 10 एपिसोड से 8 किए और 8 से अब 6 एपिसोड की सीरीज बनाना स्टार्ट कर दिए। सो ये जो सीरीज है ये जल्दी खत्म हो जाती है, अदरवाइज मैं 10 एपिसोड भी एक रात में देख लेती थी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिवर, आप मुझे बताइए कि आपके क्या हाल है। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिवर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव,
2: ये है

सो आज एक अजीब सा सवाल, आपके फोन में हजार फोटोज होंगे, बर्थडे के, ट्रैवल के, फूड के, सेल्फीज, लेकिन एक फोटो ऐसी जरूर होगी जो आपके पास है ही नहीं। मे बी वो एक फैमिली डिनर था जहां सब बिना फोन के बैठे थे, कोई रैंडम रोड ट्रिप नहीं था जहां गाड़ी में सबसे ज्यादा हंसी मजाक हुआ, या किसी अपने के साथ एक ऑर्डिनरी आफ्टरनून। उस वक्त ऑर्डिनरी लगा, लेकिन आज याद आता है कि यार कितना बढ़िया टाइम था। काश उस मोमेंट की एक पिक्चर होती। और शायद यही आयरनी है, हम आजकल हर चीज कैप्चर करते हैं लेकिन लाइफ के कुछ सबसे खूबसूरत मोमेंट्स कैमरे के बाहर ही रह जाते हैं। इसीलिए हर मेमोरी को फोटोग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, कुछ मेमोरीज जो हैं बस दिल में रहने के लिए होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनके साथ मेरी फोटोज होती ही नहीं है, पर उस मोमेंट के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। ऐसा लगता है कि यार वो दिन कितना बढ़िया था, वो डिनर कितना अच्छा हुआ था। आपके पास ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका फोटो काश आपके पास होता, आपको ऐसा लगता है? सो नंबर सेम 3311063। मैं हूँ मुस्कान और ये है रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदा।

यार आपको आपकी पहली सैलरी का नोटिफिकेशन तो याद ही होगा, कितना भी अमाउंट हो उसका फीलिंग बहुत डिफरेंट होता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। कभी किसी ने पहली सैलरी से पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लिया, किसी ने फ़ोन खरीदा, किसी ने बहुत सारी शॉपिंग की, और कुछ लोगों ने बस अकाउंट बैलेंस खोलकर बार बार देखा, क्योंकि पहली सैलरी एक्चुअली पैसे नहीं होते, वो एक प्रूफ होता है कि जो मेहनत आप कर रहे थे उसकी पहली वैल्यू आपके अकाउंट में आ गई है। और इंटरेस्टिंगली सालों बाद सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन पहली सैलरी का वो एक्साइटमेंट वापस नहीं आता, शायद क्योंकि उसमें अमाउंट से ज़्यादा अचीवमेंट होता है। तो एक बार याद कीजिए कि आपने अपनी पहली सैलरी से सबसे पहले क्या खरीदा था, और अगर वो पर्सन आज भी आपकी लाइफ में है तो उन्हें एक बार बता दीजिए कि मुझे याद है। बाय द वे, अगर मैं अपनी पहली सैलरी की बात करूँ तो वो बहुत छोटा सा अमाउंट था, और इट्स बीन लाइक 10 ईयर्स जब मैंने पहली बार एक जगह पर काम करना स्टार्ट किया था, एंड आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट अमाउंट जो मुझे पहली बार मेरे अकाउंट में मिला था। एंड वो फीलिंग ना बहुत डिफरेंट है, आप सोचते हो कि बस दुनिया खरीद लेनी है इस छोटे से अमाउंट में। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, बताइए अपनी पहली सैलरी के बारे में, स्टे ट्यून्ड, चियो बिंदास, द नंबर इज सेम 3311063।

दोस्ती ना बहुत अजीब सी चीज है। जब पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो कहते हैं नाइस टू मीट यू यार, दूसरी बार ऐसा बोलते हैं कि अच्छा आप यहाँ भी आते हैं, और तीसरी बार बहुत ही यू नो सडनली यार एक बात बताऊं। बस फॉर्मल स्ट्रेंजर से पर्सनल फ्रेंड तक का सफर यहीं से शुरू होता है। बस दो तीन बार मिलने की ज़रूरत है। फ्रेंडशिप जो है वो यूजुअली किसी एक ग्रैंड मोमेंट पर नहीं बनती, वो बनती है रिपीटेटेड कॉफ़ी से, रैंडम कॉन्वर्सेशन से, एक दूसरे के जोक्स समझने से, और कभी कभी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप दोनों बार बार एक ही जगह पर मिल जाते हो, मे बी किसी कैफे, किसी पार्क या किसी जिम में। शायद एडल्ट्स के लिए दोस्ती मुश्किल इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को पसंद नहीं करते, मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमारे पास मिलने के नेचुरल मोमेंट्स कम हो गए हैं। सो ज़्यादातर इस टाइम पर जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार आपके जो दोस्त हैं वो आपके जिम में हैं, ऑफिस में हैं, या फिर आपके किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका रेगुलर आना जाना है। सो आपकी लाइफ का वो कौन सा रैंडम पर्सन है जिससे एक ऑर्डिनरी मीटिंग के बाद एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बन गई। 3311063 इज माई नंबर। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त ना जिम में बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाकर आपको एक टाइम मिलता है कॉन्वर्सेशंस करने का, बातें करने का, और एक दूसरे को जानने पहचानने का भी। नंबर इज सेव 3311063। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

एक घर में कुछ चीजें कभी परमानेंटली मिलती ही नहीं है, जैसे कि चाबियां, रिमोट, एयरफोन्स, और एक कभी कभी तो कपड़े ढूंढते रह जाते हो, अब यार ये मिल क्यों नहीं रहा है, एक सॉक्स तो पता नहीं मतलब किस पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है। ऐसा लगता है कि यार कपड़े धोने के बाद अगर सेट नहीं किया उसी टाइम तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अक्सर चीजें लूज नहीं करते, हम बस याद नहीं रखते कि रखी कहाँ पर है। जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ब्रेन किसी ऑर्डिनरी एक्शन को प्रॉबेबली रिकॉर्ड ही नहीं करता, मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो, तो बस वहाँ पर आपने चाबी कहाँ रखी, रिमोट कहाँ पर है, आपको याद ही नहीं रहेगा। इसीलिए चाबियाँ जो है वो टेबल पर रखते वक्त दिमाग में चल रहा होता है, कल मीटिंग है, पाँच मिनट के बाद आपको ये करना है, कीज कहाँ है, ये सब आपको याद ही नहीं आता। और नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ जब नहीं मिल रही हो तो पैनिक मत कीजिएगा, पहले वही जगह देखिए जहाँ आपने कहा था मैं इसी मतलब सेफ जगह पर इसे रखती हूँ, चाहे वो चाबियाँ हो या रिमोट हो या कोई दूसरी चीज़ हो। सो बेसिकली वैसे आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो डिसअपियर हो जाती है आपको बिना मतलब अंदाज़ा दिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम है 3311063। मैं अगर अपनी बात करूँ तो एक टाइम हुआ करता था जब मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, और फिर मैंने अपनी लाइफ को धीरे धीरे डीक्लटर करना स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। आज का टाइम है कि चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और ऐसा लगता है कि लाइफ शुड बी लाइक दिस ओनली। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

यार इट्स जस्ट वेंसडे नाइट, लेकिन दिल में थोड़ी सी वो थर्सडे वाली फीलिंग आ रही है. थर्सडे आते ही प्लान्स स्टार्ट हो जाते हैं. वीकेंड पे क्या कर रहे हो, कहीं डिनर पर चले, मूवी, ड्राइव, मतलब बहुत सारे सवाल दिमाग में आने लग जाते हैं. और कतर में तो इवनिंग प्लान्स का अपना ही अलग चार्म है. कभी मॉल्स, कभी रेस्टोरेंट्स, कभी कॉर्निश, और कभी बस गाड़ी में म्यूजिक लगाकर निकल जाना बिना किसी डेस्टिनेशन के. लेकिन मुझे वीकेंड का सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या लगता है? उसका वेट करना, वो छोटी सी एक्साइटमेंट कि दो दिन थोड़ा सा स्लो चलेंगे, काम के नोटिफिकेशंस थोड़ी सी कम होंगी और टाइम थोड़ा अपना सा लगेगा. और आज के वीकेंड को लेकर एक प्रॉमिस आप भी कीजिए मुझसे कि वीकेंड को ओवर प्लान मत कीजिए. कभी कभी ना बेस्ट प्लान्स जो होते हैं वो देखेंगे मूड के हिसाब से, उससे भी बन जाते हैं. सो कतर, आपका परफेक्ट वीकेंड कैसा दिखता है? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या क्या होना चाहिए एटलीस्ट वीकेंड में? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. नंबर इज सेम 3311063. बाय द वे कल ऑलरेडी थर्सडे है और आई एम श्योर आपके जो दिमाग में वीकेंड के प्लान्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए होंगे. एक सवाल है मेरे भी दिमाग में, लेकिन थोड़ी देर बाद पूछूंगी आपसे. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

सवाल पूछूं, हाउ आर यू, सबसे कॉमन आंसर है बिजी। और हमें ना बिजी को ऑलमोस्ट अपनी आइडेंटिटी बनाने का मन करता है। बिजी हो तो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, कैलेंडर फुल हो तो लगता है कि प्रोडक्टिविटी चल रही है। लेकिन एक बार सोचिए, बिजी और फुलफिल्ड दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। आप पूरा दिन मीटिंग्स में रह सकते हैं, फिर भी घर आकर लगे कि आज एक्चुअली किया क्या था। और दूसरी तरफ कभी एक सिंपल सी शाम होती है, अच्छा खाना, फैमिली से बातें, थोड़ा सा म्यूज़िक और कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं, फिर भी अंदर से लगता है कि आज का दिन अच्छा था। शायद ज़िंदगी का गोला हर मिनट फिल करना तो बिल्कुल नहीं है, कुछ मिनट्स को फील करना भी है। सो आई वॉज थिंकिंग कि भाई हम हर दिन बिजी रहना पसंद करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर लोग आपको खाली दिख जाए तो आप उन्हें जज करने लग जाते हो, और अगर आप यू नो थोड़ी देर के लिए खाली बैठ जाओ तो आपको लगता है कि यार कोई दो काम और निपटा ही लेते हैं। सो हर वक्त बिजी रहना भी ज़रूरी नहीं है। आप जेन्युइनली बिजी हैं या बस हर वक्त अवेलेबल रहने की आदत हो गई है, बताइएगा ज़रूर 3311063 पर। मैं हूँ मुस्कान और आप सुन रहे हैं मिडनाइट लाउंज, जहाँ रात थोड़ी स्लो होती है और बातें थोड़ी दिल के पास। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल थर्सडे के साथ बहुत सारी नई कॉन्वर्सेशंस, नए सुपरहिट गाने होंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। मॉर्निंग यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM। रेडियो ओलिव पर ओलिव रिवाइंड।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त